0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live fan.
1: Absolutely. Dhamadham mast kalandar. Hello. 8 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। सुबह सुबह आ रही है यहाँ पे अंतरा की आवाज, बिकॉज इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग और चल रहा है यहाँ पे मस्ती का मंत्रा। एंड कल से भाई फुटबॉल लवर्स सिर्फ एक ही नाम लेकर शेयर कर रहे हैं, मेसी। यस, यू डोंट मेस विद मेसी एट ऑल भाई, वो गोट है फॉर अ रीजन एंड ग्रेटेस्ट। या गोट पता है ना, गोट का फुल फॉर्म नहीं पता है? किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है, बट एनीवेज ही इज लेजेंड एंड लेजेंडरी। बट वेल, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु विल ऑलवेज मैच योर एनर्जी। मैं कहीं पर भी किसी भी सेटअप में आप मुझे रख दो, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आई विल मैच दैट, अगर आपकी एनर्जी फुल ऑन हाई है तो आई कैन सरपास दैट एज वेल। बट हैविंग सेड दैट, ये हमेशा मेरे साथ क्रिकेट और फुटबॉल और ऐसे स्पोर्ट्स में होता है जहां पर मुझे शायद गेम उतना, ये स्पोर्ट इतना ज्यादा समझ में ना आता हो, बट पैशन में फुल ऑन दिखा सकती हूँ उसमें। इफ यू स्क्रीम ये, आई विल ऑल्सो स्क्रीम ये। बट देन इट वॉज अ रियली रियली गुड डे फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया, यस, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। एंड लियोनेल मेसी जो है, ही हैज मेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग हिज 17th फीफा वर्ल्ड कप का गोल इन द 38th मिनट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, जब इनका ये ग्रुप जे का मैच हो रहा था कल की डेट में। विद द स्ट्राइक ही बिकेम द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन द मेंस वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ब्रेकिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड फर्दर काइंड ऑफ सीमेंटिंग अपना लेगेसी ऑन फुटबॉल का ये बिगेस्ट स्टेज। आई मीन ब्रो, मेसी है वो, है ना? So well, that's how we say when we talk about the greatest of all times. Eesh, too good. You should have seen my brother's face, okay? Hum log, yaar, jab hum baat karte hain and his face turns like from nothing to everything in few seconds. You talk about cricket, you talk about any sport in that case, but cricket and football is his like favorite, and he's like, oh my god. And then he's telling me so many things and I'm trying to absorb also so many things. But yes, as I told you, I can match energy, definitely. So Messi, yes, Messi. which match are you looking forward to, people? Whoever is following FIFA, let me know. 9589863. But lekin filhal maine socha hai ki khushiyon ke saath अच्छे गाने भी प्ले होते रहने चाहिए। Let's do that.
2: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Lion Challenge. City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musty Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
5: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
6: Check it out.
4: Subha ki dose of fun and facts. Musty ka mantra with RJ Antra.
7: Welcome back, Radio Musti 24/7 Live. Antra aapke saath yahan par chal raha hai Musti ka mantra. Good morning, good morning. Subah ka wo waqt aur subah subah kya aap class pe dhyan de rahe the? Okay, kaun si class? Abhi thodi der pehle maine ek footballer ka naam liya tha jinhone FIFA World Cup mein kal ke match mein include karte hue sabse zyada goal kiye hue hai. Kaun hai wo footballer jiski main baat kar rahi thi? Kya aapko unka naam yaad hai? Bas abhi thodi der pehle. If you are tuned in, you know. If you are updated with what is going around in the world of sports, then you definitely know. Hint to Argentina ke player. So well, to aap mujhe bataye. Aur agar iska jawab de sakte ho, to I am sure that you are very well aware of what is happening around you, right? And if you are one of them that ki bhai aapko up to date rehna pasand hai, aapko ye sari cheeze pata hai, you know, aap apne bachche ko padhane bithate ho aur kehte ho ki are tumko ye nahi pata, matlab hamare time mein, hum GK mein, hame sab kuch newspaper padha karo, sab cheez mein updated raha karo, hota hai, aapke saath hota hai, and then of course, ek baar try karna to aapko bhi banta hai. I'm talking about the Lion City Challenge. We have been talking about it for quite some time. Kyunki agar aap mein hai wo baat, if you are someone like that, jinka, you know, knowledge in sab cheezo ke baare mein kaafi kaafi strong hai, then आइए जरा मैदान लायन सिटी चैलेंज में देखा जाए कि कितना स्ट्रांग है वो. सो वेल, ये हमारा एक बहुत ही वन ऑफ अ काइंड यूनिक गेम शो है, बहुत जल्द आने वाला है. फिलहाल इसमें कुछ राउंड्स है इनिशियली, जिसको थ्रू करने के बाद ही आप अल्टीमेट उस लेवल पे पहुंचेंगे. सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, LION लायन लिखकर भेज देना है 9151-8963 पर, ठीक है. वंस यू सेंड अस दैट, देन जो टीम है लायन सिटी चैलेंज की, वो आपको दो सवाल पूछेगी और वो जवाब आपको देने पड़ेंगे. सही जवाब पे आपको नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेप्स जो है बताए जाएंगे कि अब इसके बाद आपको ये करना है. बट तो अल्टीमेट सेट पे जब आप पहुंचोगे, ओके, जब यू आर कंपीटिंग नॉट ओनली फॉर द नॉलेज यू हैव बट ऑल्सो फॉर द प्राइजेस यू विल गेट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग. सो कंप्लीटली वी आर थ्रिल्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन बस आपका है इंतजार. सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट. या वो फोन पे, यस, व्हाट्सएप, वो हमारा ऐप है ना, व्हाट्सएप वाला बटन है ऊपर, या उसको दबाइए और जाके लिख दीजिए LION लायन एंड सेंड इट टू अस इमीडिएटली. और रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20 पंपिंग अप फ्राइडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स. द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स मस्ती टॉप 20 ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव द ओनली लाइव बॉलीवुड रेडियो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया सिंस 2009.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: ट्रैफिक अपडेट
4: 8:31 हो चुके स्टूडियो क्लॉक में. आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन BKE टुवर्ड्स PIE बिटवीन PIE चांगी एंड KJE. एक एक्सीडेंट की खबर है, PIE पे हुआ है. अगर आप जा रहे हैं टुवर्ड्स एडवर्स आफ्टर पायनियर रोड नॉर्थ, अवॉइड करें लेन नंबर 4. और मिलेगा हैवी ट्रैफिक इन CTE टनल टुवर्ड्स FIE एट हैवलॉक रोड एग्जिट. सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. फिलहाल यहां से चलते हैं सीधा भूल भुलैया में. लेट मी कम बैक एंड टेल यू दैट यस, क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: ये गाना सुनते सुनते याद आया कि रूमर्स ऐसे आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव कि भूल भुलैया 4 भी इन प्रोसेस है. आई थिंक हमें अब ऐसे ही कि थोड़ा टाइम तक इस ट्रेंड के साथ निभाना पड़ेगा. 2, 3, 4, 24, 2004, आई डोंट नो कहाँ तक पार्ट्स जाएंगे ये वाले. कुछ तो नया, कुछ तो नया. रेडियो बस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ 8:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. चलिए भाई क्रिकेट की दुनिया में जाते हैं. मेजर अनाउंसमेंट हुई है कल की डेट में, कल नहीं कल परसों की डेट में इनफैक्ट हुई है. बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उन्होंने कंफर्म किया है दैट शुभमन गिल जो है ही विल ऑफिशियली लीड इंडियन टीम फॉर द अपकमिंग 3 जो मैच की ओडीआई सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि जुलाई में होने वाला है. ना ये टूर जो है स्पेशली एक्साइटिंग फॉर द फैंस क्योंकि दोनों हमारे वेटरन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली दे हैव बीन रिटेन्ड इन दिस स्क्वाड एंड दे will be playing Shubman Gill ki captaincy mein. Yeh transition strategy hai. Selection jo hai highlight karta hai BCCI ka long-term leadership ka transition plan for this One Day International ka format by appointing 26 saal ke humare Gill sahab as the full-time skipper. And basically management jo hai allow kar rahi hai ek younger core to take the reins while still benefiting from the immense on-field experience and stability jo ki Rohit Sharma aur Virat Kohli se aayega. Shreyas Iyer jo hai, he has been named the vice captain to support Shubman Gill is leadership group mein. So, well, dekhte hain kya hota hai. We always look forward for a good cricket match. So, highly anticipated 50 over ka leg of England tour will kick off mid-July. Uske baad aayega ek T20 ka series in Ireland. So, well, let's see. No, jahan jahan jo jo changes aate jayenge, hum aapko batate jayenge. Radio Masti 24/7 live. We're looking forward for a lot of good matches ahead.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
3: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
0: वो एक मोमेंट जरूर आता है हर किसी की जिंदगी में जो आपकी जिंदगी की लाइनें एकदम पलट के रख देता है। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ। यहाँ पर 8:47 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। भाई जाकिर खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो उनका ही एक किसी में ही सेड दिस लाइन दैट काम करते रहना चाहिए, यू नेवर नो दैट व्हेन दैट वन मोमेंट स्ट्राइक्स एंड व्हेन इट कम्स it will come to you with abundance. So well, भाई हाल ही में ये जो समय रैना का शो India's Got Latent का season 2 release हुआ, and then we were talking about that how Alia and Charvari were there, but they were not the highlights and points of that episode. भाई उस इस पर्टिकुलर मतलब एपिसोड में सुकृत देव करके ये बंदा आया and he did this impersonation of he was good, okay? He was very, very spontaneous. And फिलहाल के लिए latest internet का phenomenon बन चुका है। भाई 8K followers, पिछले 8 साल से ये बंदा जो है इसी line में है, अलग अलग जगह अपनी audition की tapes भेजता है, just waiting for that one break, okay? And then for some reason, this controversial India's Got Latent season 2 releases, इसके first episode में ये बंदा आता है, 7K followers इसके Insta पे, उसको जब इन्होंने

9 बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। बट वेल, अपनी गाड़ी को यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। वेल, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो है कुछ ऐसा आया है दैट करण देओल। अब करण देओल कौन है? देओल नाम से आपको थोड़ा सा तो मैचिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। सनी देओल के वो है, इनके पिताजी हैं। एंड वेल, सनी देओल की एक मूवी आने वाली है। पहले इस मूवी का नाम कुछ और था, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड टू बटवारा 1947। एंड यू नो व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी ऑल नो व्हाट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बट व्हाट इज इवन मोर स्पेशल इज दैट करण देओल, आई थिंक लास्ट उन्होंने एक मूवी की थी पल पल दिल के पास, पापा ने जो है प्रोड्यूस की थी, उनके प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी। बट इट नॉट डिड नॉट रियली वर्क वेल विद द ऑडियंस एंड पीपल वर लाइक की या आई थिंक वी हैव सीन बेटर। बट देन ऑफ कोर्स यू शुड नेवर गिव अप। सो वेल, ही इज गोइंग टू बी देयर अपने पापा जी के साथ में इन बटवारा 1947। एंड ही रोट दिस रियली लॉन्ग इंस्टाग्राम पोस्ट जहां पर यू नो he expressed कि भाई मैंने बस एक ही बार बताया था पापा को दैट मुझे एक्टिंग करनी है, एंड टू बी एबल टू शेयर स्क्रीन विद हिम टुडे व्हाइल वॉचिंग हिम अप क्लोज मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। सो 14 August 2026 जो है दैट इज व्हेन ही इज गोइंग टू बी देयर शेयरिंग दैट सेम स्पेस विद सनी देओल। सो वेल, देखते हैं अभी आगे आगे और क्या क्या होता है। There's a few in pipeline. There's this Welcome to the Jungle which is coming. This movie is coming. So अभी भी हमारा होप का जो पंचम फहरा रहा था वो अभी भी बिल्कुल जारी है कि कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो हमें मिल ही जाएगा। Did you watch any latest Hindi movie? Did you happen to watch Cocktail 2? Let me know 9518963 pair.

0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
1: जहाँ पे इतनी सारी चीजें बन रही है तो फिर वहां पे आर्यन खान क्यों पीछे रहे? यस, द खान हैज टू कम इन द सिनेरियो समहाउ। 9:00 हो चुके हैं 10 मिनट। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ है, जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के जो है खबरें आपके लिए, ओनली एंड ओनली ओवर हियर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई आर्यन खान ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया भाई बैड्स ऑफ बॉलीवुड के साथ, ठीक है। उसमें लक्ष्य नजर आए एंड उसमें काफी लाइक इट वॉज Not bad, okay? It was a series, जो देखी एंड लगा कि ठीक है इसको देखा जा सकता है, लाइक नथिंग ओवर द टॉप बट देन नथिंग बैड एज वेल। बट वेल, अब आर्यन खान तो आर्यन खान है, ही इज कमिंग बैक फॉर अनदर राउंड। अभी तक कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है बट कई सारे रिपोर्ट्स जो है ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं दैट द सेकंड सीजन ऑफ दिस बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीरीज इज करंटली जो है यू नो उसका सब कुछ फाइनलाइज किया जा रहा है। सो द फर्स्ट सीजन मेड दिस मैसिव इम्पैक्ट, अपना बोल्ड टेक ऑन द इंडस्ट्री। दिस इज समथिंग वी ऑल वॉन्ट टू नो कि भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ चलता रहता है, किस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाती है, कौन कब कैसे कहां। सो वी ऑल हैव दीज क्वेश्चंस एंड इट्स नॉट ओनली टुडे, ये बहुत मतलब बहुत पहले से, पहले हमको क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी और क्योंकि हमारे पास ये इंटरव्यूज और ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे, अब ये सारे आउटलेट्स और एक्सपोजर इतना ज्यादा है दैट बट द क्यूरियोसिटी स्टिल रिमेन्स। नाउ द क्रिएटिव टीम अलॉन्ग विद राइटर बिलाल सिद्दीकी इज ऑलरेडी काइंड ऑफ एक नए स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर चुकी है अपेरेंटली, एंड का प्राइमरी गोल राइट नाउ इज टू एंश्योर दैट द स्टोरी लाइन फील्स कंप्लीटली फ्रेश एंड टेक्स द नैरेटिव जो है इनटू दिस न्यू टेरिटरी रादर देन जस्ट रिपीटिंग द सेम फॉर्मूला दैट मेड द फर्स्ट सीजन वर्कआउट सो वेल। सो देखते हैं भाई क्या होता है। आई लव्ड राघव जोयाल जो है उनका कैरेक्टर इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड आई थिंक ही वॉज फैंटास्टिक ओवर देयर। Even Lakshya, okay, I have to give that to him. Unki awaz, unki presence was really, really good. So let's see whether they are able to keep what they are saying intact. Ki bhai kuch fresh lekar aayenge ya phir usi masale ko do char idhar udhar concoction ko change karte hue kuch aur wahi cheez samne lekar. I don't know. We can just wait and watch, right? Radio Masti 24/7 live पर फिलहाल उस मूवी की तरफ चलते हैं जिसने बिल्कुल कहते हैं ना मचा दिया ब्रो। या धुरंधर, it is coming up next is Run Down This City. Let's go.

0: धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: आपकी नॉलेज, आपकी जीत।
2: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स और मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
1: That is right. This is Masti Ka Mantra with Antra. 9 हो चुके हैं 20 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बिल्कुल जी, आपकी जिंदगी जब से ये होता है ना कि कभी भी आपकी कोई चीज की नॉलेज थोड़ी सी भी बढ़ने लग जाती है तो फिर वो एक तरह का स्यापा भी होने लगता है। लाइक इफ यू आर जस्ट गॉटन इन टू द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, भाई नंबर्स आपकी जिंदगी में एक अलग ही फॉर्म में वापस आते हैं। नहीं कि भाई अब आप हर चीज में कैलोरीज काउंट कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी जा रहे हो कि नो नो नो आई ऑलरेडी हैव दिस मच, आई नीड टू बी इन माई कैलोरी डेफिसिट, सो आई कैन नॉट ईट मोर। हर चीज आप उठा रहे हो दुकान में तो आप पहले पीछे देख रहे हो कि भाई इससे पहले मैंने कभी भी ये सारी चीजें नहीं कर रखी थी कि व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग और समथिंग, इसमें कितनी कैलोरीज, अच्छा इसमें इतना है इतना है, प्रोटीन मेरी जिंदगी में ऐसे वापस आया है जैसे कि कोई रोमांटिक सॉन्ग वापस आया हो मेरी जिंदगी में बहुत टाइम के बाद, एंड आई एम kind of obsessed with it, कि नहीं नहीं ये तो उस टाइम पे भी पसंद आया था, ये भी काफी अच्छा ही है। But well, that is life. नहीं क्योंकि बाकी मुझे ऐसा लगता है स्पेशली गर्ल्स के उसमें हाल ही में मेरी रिपोर्ट्स वापस आई है, सो सब कुछ हम अचीव कर सकती हैं, बट ये जो नंबर ऑफ विटामिन डी और आयरन और बी विटामिन B12 का जो नंबर है भाई साहब, इसको सही करने में ना I don't know और कितनी कुर्बानियां और क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट वेल once in a time जब आपके पूरा ऑल बॉडी चेकअप होता है और आपकी रिपोर्ट वापस आती है, एंड देन फिर इफ जस्ट सिट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं तो बोलती हूँ कि मैं कर तो रही हूँ, ठीक है, ठीक हो जाएगा। सो वेल when was the last time you got your checkup done? आजकल मैं सबसे यही पूछती हूँ, नहीं कब किया था, कराना चाहिए, इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है एवरी 6 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स विच एवर सूट्स यू बेटर, बट ये नंबर होगा क्या करें। आप लोग कैसे मैनेज करते हो जब आपकी ऐसी रिपोर्टें आती है, उसके बाद थोड़े दिन तक चलता है, लंबे दिन तक चलता है कि क्या चलता है। भाई सोनाली भी यहाँ पर आ चुकी है, हेलो जी गुड मॉर्निंग सोनाली, कब कराया था लास्ट चेकअप तुमने अपना फुल बॉडी? बट वेल या ये सारे नंबर्स को लेके मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ, और कभी कभी मैं खुद ही सोचती हूँ कि वेदर टू लाइक इज इट ओके टू गेट दिस मच ऑब्सेस्ड विद दीज थिंग्स, और क्या करना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। या सो यू मैं मांग रही हूँ आपसे सजेशन कि वॉट टू डू वेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो it's the dear masti ka reverse, yeah, uno reverse. Dear listener, do let me know what do you do when you are this kind of situation, how to calm yourself down and tell yourself ki nahi beta nahi, it's okay, fit hona hi zaruri hai, healthy hona zaruri hai, usi pe focus karo, what to do. Good morning.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या
6: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाह जी क्या बात जी।
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: If you have not tried Gulkand from ggmartonline.com, then you should. That is one of the things, like, really, really good. 9:34, Roju Ken Studio Clock, May Radio Masti 24/7 Live, Par Chal Raha Masti Ka Mantra with me, Antra. Bhai, Gulkand, jo ki, matlab, aapne bilkul pehle bhi try kiya hoga, but Hindustan mein, like, India mein try kiya hoga. But here in Singapore, like, the smell of it, वही सोच के तो मुझे लाइक होता है ना कुछ कुछ चीजों की स्मेल इज सो नाइस एंड रिफ्रेशिंग दोस फ्रेश रोज पेटल्स एंड द नेचुरल शुगर सो बेसिकली गुलकंद हैज अदर गुड इफेक्ट्स एज वेल राइट इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड गर्मी तो आपको पता ही है सिंगापुर की क्या ही बताऊं मैं बट देन इट्स ऑल्सो नोन फॉर इट्स नाइस रिच टेस्ट एंड द नेचुरल अरोमा इट हैज राइट एंड डाइजेस्टिव टॉनिक या कूलेंट के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है सो कई सारे चीजों के लिए चाहे वो डाइजेशन के लिए हो या फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए हो आपके एनर्जी बूस्ट करने के लिए हो या फिर हेड एक बर्निंग सेंसेशन स्ट्रेस वगैरह बिकॉज इट्स रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इसका स्किन बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी एज वेल ये गुलकंद जो है आपको बिल्कुल 300 ग्राम $2.3 जो है ओनली आपको मिलेगा ggmartonline.com पर नॉट ओनली दैट आई थिंक ggmartonline.com हैज अ लॉट ऑफ अदर कमाल की चीजें आई ऑलवेज टॉक अबाउट द जामुन ट्राइंगल्स दे हैव इट्स समथिंग वेरी यूनिक आई हैव नेवर हैड इट बिफोर समथिंग लाइक दैट एंड या जब से किया है ट्राई तब से आई एम लाइक आई quite impressed so whenever I get impressed by something I have to come and tell you and ask you to try it at least once ggmartonline.com jaye login kare and jaake just explore it more and more not only this you can get all other kind of grocery and household stuff over there as well so all you have to do is login over there register and yes just put all of these things in your cart and try it once. Yep.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: अंबर सरिया लो मैं आ गई यहाँ पर इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट लेकर व्हीकल ब्रेकडाउन इस घंटे आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर जोरोंग पोर्ट रोड रोडवर्क्स की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर टेम्परीज अवॉइड करें लेन नंबर 4 और व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स चांगी एट चलान अनाग बुकिट एंट्रेंस सो वेल 9:47 हो चुके स्टूडियो क्लॉक में ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट ऑफ द आवर एंड भाई लायंस एंड रिचार्ज का अपडेट कुछ ऐसा है कि अगर आपने अभी तक हमें लिखकर नहीं भेजा है लायन 9158963 पर मतलब आप स्टिल यू आर लिटिल फार अवे टू बी अ पार्ट ऑफ द लायन सिटी चैलेंज गेम शो ऑफ इट्स ओन काइंड एंड अ गेम शो विच ऑल नॉट ओनली यू विल गेट दिस मौका टू फ्लेक्स ऑल योर नॉलेज बट ऑल्सो यू विल गेट द मौका टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस एज वेल सो वेल किसी के लिए भी खेले चाहे नॉलेज फ्लेक्स या फिर प्राइजेस के लिए डेफिनेटली ये पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा टेक्स्ट अस LION लायन टू 9158963 टू पार्टिसिपेट इन द लायन सिटी चैलेंज एंड उसके बाद बाकी के स्टेप्स एक के बाद एक एंड द राउंड्स एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल टीम गाइड करती हुई जाएगी भूलिएगा भी नहीं उठाइए उठाइए कदम नहीं हाथ टेक्स दूसरी से करेंगे ना
3: Are you ready?
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: राज की बात बताऊं मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं
6: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं
7: द RJ Academy at Musti Media Network is now open for you That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus. Offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
8: Namaste, bhaiyon aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: कुछ कुछ फिल्मों की किस्मत अब क्या ही कहेगा, ऐसी होती है कि नहीं बननी है, नहीं होगा कुछ, ऐसा हमें लगने लगता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराब के साथ, जैसे मुझे लगता है दैट डॉन 3, कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग विद दैट मूवी, की कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो भाई, वो उसके इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुए जा रहे हैं, उस चक्कर में इतनी बात भी हो गई, बट देन अल्टीमेटली आई डोंट थिंक सो कि कुछ होने वाला है उसका। बट कमिंग बैक टू दिस वन, दोस्ताना 2, यस अगेन अनदर पार्ट 2 ऑफ दिस अमेजिंग दोस्ताना मूवी। जब वो रिलीज हुई थी तो वी ऑल एंजॉयड इट, राइट? प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम एंड अभिषेक बच्चन, क्वाइट नाइस। बॉबी देओल भी थे उसमें बाय द वे। सो वेल, कमिंग टू दिस वन भाई, दोस्ताना 2 पहले था कि भाई कार्तिक आर्यन है, फिर कार्तिक आर्यन नहीं है, ओके फिर था हमारी जानवी कपूर है, बट फिर इवेंचुअली शी ऑल्सो लेफ्ट द पार्टी। उसके बाद बात कुछ ऐसी आई कि भाई ठीक है, कोई नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते हुए लेकर जाएंगे, लेकिन अब पता चला है कि भाई उनके जो डायरेक्टर साहब है, जो अभी 7-8 महीने तक इनके जो है कुछ ना कुछ काम चल रहा था इसके ऊपर, ही ऑल्सो हैज लेफ्ट द दोस्ताना 2 का पार्टी बिकॉज क्रिएटिव डिफरेंसेस काफी सारे हो रहे थे। सो व्हेन दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, तब आपको लगने लगता है कि you don't know whether it is going to happen or not, but well, ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है, है ना? Radio Masti 24/7 live पर, let's move on, we should।

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आप कहोगे तुम कहाँ मैं स्टूडियो के बाहर मिल जाऊंगी। अब वही जाना है क्योंकि हम क्या सुबह सुबह कोई इंसान उठकर यहाँ पे ड्यूटी निभा रहा हो अपनी, तो उसको जिसको जो आया है तो उसको जाना भी तो पड़ेगा ना। अभी आप भी थोड़ा सा चिल करो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पे मस्ती का मंत्रा चल रहा था। अब म्यूजिक कैफे चलेगा 10 बजे के उस पार, एंड 11 बजे फिर ऑफकोर्स हमारी मस्ती मॉर्निंग्स वाली आरजे नूपुर आ जाएंगी यहाँ पर, एंड देन फिर आपसे वापस से मुलाकात होगी आज की शाम डियर मस्ती दिल से पर, हम जहाँ पे चिट्ठियां पढ़ रहे होंगे। एंड अगर आपने अभी तक वो वाला हमारा नया शो नहीं सुना है ट्यूसडे वाला, डेफिनेटली एक बार तो सुनना बनता ही बनता है बिकॉज इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग। पता नहीं, मुझे तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा फील होता है। मैं अक्सर इसका ऑनकोर जो है सुनती हूँ बाद में जाकर, एंड इट फील्स देर आर टाइम्स एंड मोमेंट्स व्हेन इट टचेस योर हार्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे। सुबह एनीवेज जरूर सुने और स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, क्योंकि इससे बेहतर तो और कुछ वैसे भी नहीं है दोस्तों, है ना। फिलहाल के लिए हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
4: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: I love you, रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Masti 24/7 Live.
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आप इतनी ओवर एक्सेसिव यूज कर लेते हैं कि उसके बाद उससे मन उठ जाता है। तो मेरी लिस्ट में इन चीजों में टॉप पर नंबर आ गया है मोबाइल फोन का। यार ऐसा लग रहा है कि रोज इसको देखते देखते देखते देखते ना बोरियत सी आ गई है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है क्या? हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर वंस अगेन मस्ती मॉर्निंग शो पर आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। और ऐसा होता है एंड इट्स नॉर्मल, कोई चीज हम ओवर एक्सेसिव तरह से यूज करेंगे, सुबह दोपहर शाम उसी का चेहरा देख कर जियेंगे तो बोरियत तो हो जाएगी। कुछ इसको अल्टरनेट बताओ मुझे, मोबाइल फोन नहीं तो क्या? किस पर टाइम स्पेंड किया जाए? कुछ और, मतलब ठीक है फिजिकल एक्टिविटीज तो ठीक है, बट अपना काम भी हो जाए, दिक्कतें भी ना आए और ये चीजें साइड में रख दी जाए। आपके जो आइडियाज हैं वो 9151896 पे टेक्स्ट करके बता देना। मीनवाइल मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर और भी बहुत सारी बॉलीवुड इनसाइट्स बताने के लिए आ चुकी है। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल। आप तब तक बढ़िया बढ़िया कुछ बेहतरीन गाने सुनिए और उसके बाद करते हैं मुलाकात।
3: 1, 2, 3

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या
6: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाह जी क्या बात जी,
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: ऐसा होता है कि हमें कहा जाता है कि प्लीज मीडिया के सामने जाकर सच नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज आप जितना सच नहीं बोलेंगे उतने ज़्यादा व्यूज आपको मिलेंगे, उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रोलिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई सच सुनने का जमाना तो रहा नहीं है। सो हेलो हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अभी इस ज़माने में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, इसमें बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आकर बहुत कुछ बता जाते हैं। उनमें से एक है मनोज वाजपेयी जी। बहुत ही सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पर ये काम तो कर रहे हैं। मीनवाइल आपको पता है इन्होंने क्या बोला है कि जो बिग बजटेड मूवीज होती है ना, एकदम डॉन वाली स्टाइल में रिलीज करी जाती है, मतलब हैवी प्रमोशंस के साथ, हैवी नंबर ऑफ शोज के साथ, और जो लो बजटेड मूवी होती है उनके सामने उन्हें दबा दिया जाता है। मतलब एकदम गुंडागर्दी करके इन मूवीज को रिलीज किया जाता है और कह दिया जाता है जितने भी थिएटर्स ओनर्स हैं कि अगर आपने इस हिसाब से रिलीज नहीं किया तो अगली बार से आप देख लेना। कुछ ऐसा सीन इंडस्ट्री के अंदर चलता है और चलता रहेगा जब तक कोई बिल्कुल वो होता है ना, ठोस प्रोटोकॉल्स नहीं आ जाते। आज से नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप

0: शोर सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? एक बार के लिए हम अपने लिए जो चीजें बना रहे हैं, वो चाहे मिठाइयाँ हो, वो चाहे शेक्स हो, वो चाहे नमकीन हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें या ना डालें, लेकिन जो हमारे घर पर चार रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके सामने जो सर्व किया जाएगा, उसमें ड्राई फ्रूट्स होने मैंडेटरी हो जाते हैं, राइट? सो व्हाई नॉट, जब आप ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर करें तो ऑर्गेनिक बेस्ट क्वालिटी के करें, ताकि आपकी हेल्थ भी बन जाए। हाँ, इसके लिए आपको कहाँ पहुँचना है? सिंगापुर का अपना ग्रोसर पार्टनर, दैट इज ggmartonline.com, जहाँ आपको प्रीमियम ड्राई फ्रूट से लेकर ऑर्गेनिक फ्रूट से लेकर हेल्दी ग्रोसरी से लेकर डेली एसेंशियल से लेकर क्या कुछ नहीं मिलता है। हाँ, सो एंजॉय दैट। मीनवाइल, अगर आप माउथ फ्रेशनर की तरह कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, वो हो सकती है इनकी 100% प्योर एंड नेचुरल गुलकंद। 300 ग्राम आपको करीबन $2.3 का मिल जाएगा, जिसमें ऑर्गेनिक शुगर और गुलाब का जो फ्लेवर है वो आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड लॉग ऑन ggmartonline.com। मैं आरजे नूपुर, मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

जिस तरह सिंगापुर की ह्यूमिडिटी देखकर हमें बारिश की तलाश रहती है कि बस आ जाए आ जाए आ जाए, ठीक यही इन्वायरमेंट जो है वो इंडिया में भी चल रहा है। वहाँ भी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ चुका है और वेदर जो है वो चेंज होने के मोड पे है। तो डेफिनेटली ऑन दिस पॉइंट जो बारिश की बातें हैं वो निकल कर आ रही है, लेकिन इस बार भी वेदर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पता चला है कि करीबन करीबन करीबन बारिश पहले से कम होने वाली है। मतलब हर सीजन में 84.4 mm जितनी बारिश का एक अपना रहता है और इस बार 46% रिड्यूस होके 45.6 mm तक का रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट लेट्स सी, एवरी टाइम मूवीज की तरह जैसे क्लाइमेक्स चेंज हो जाता है ना, ठीक वैसे ही वेदर रिपोर्ट्स भी। आज ये ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

देखो, घर में हमेशा एक बच्चा ऐसा होता है जिसे कहा जाता है कि मेहमान आए तो तुम चुप रहना। क्यों? क्योंकि वो सीधा जवाब नहीं दे पाता ना, वो हर बात का टेढ़ा जवाब देता है। और भाई, मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती करवाना कौन चाहेगा। सो हेलो, हाय, मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को भी टोक दिया जाता था कि प्लीज तुम मत बोला करो, जितना काम का हो उतना ही बोला करो, अदरवाइज लोग तुम्हें जज कर लेंगे। फिलहाल हुआ क्या है बताती हूँ। रिसेंटली अक्षय कुमार जो है वो अपनी फ्लाइट पकड़ के कहीं जाने वाले थे और एयरपोर्ट में एंट्री ले रहे थे, तो पेपराजी फोटोग्राफर्स ने उनसे बार बार पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि क्यों, तुम मेरे मामा लगते हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये इनका उल्टा जवाब सोशल मीडिया पे थोड़ा वायरल हो गया, राइट? एनीवेज, आपको भी तो हर सवाल के जवाब देना आता है, मतलब मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछ रही हूँ। अब वो आईक्यू लेवल्स आपका लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ हो, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सिंगापुर से जुड़ा हुआ हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो, कोई भी आईक्यू लेवल हो सकता है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो जरूर जीतने वाली है। बिकॉज सिंगापुर का द स्मार्टेस्ट गेम शो आ चुका है, दैट इज द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें आप हमारी तरफ से, मतलब मस्ती मीडिया नेटवर्क की तरफ से इनवाइटेड हैं। आप क्विकली पार्टिसिपेंट बनिए, जिसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा। टाइप कीजिए लायन LION और हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज पर 9151 8963। सामने से जो सवाल आएंगे उन्हें आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर फिक्स करके आंसर देना होगा जो रूल्स आपको मैसेज में बताए जाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर दैट। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: 3, 2, 1.
1: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर। अच्छा, जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार साइकिल चलाई होगी वो आपके लिए माइलस्टोन होगा। फिर आप साइकिल से बाइक पर स्विच हुए होंगे या हर तरह की स्कूटीज पे स्विच हुए होंगे तो वो आपके लिए माइलस्टोन है। फिर आप टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे स्विच हुए होंगे तो वो भी माइलस्टोन है। तो लाइफ में ये माइलस्टोन आते रहते हैं ना, तो मोटिवेशन बनी रहती है। लेकिन अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं, जब कोई एक्टर टेलीविजन इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड की तरफ रुख करता है उसके लिए ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होता है। और ये ऑफकोर्स अभी माइलस्टोन अचीव करने वाली हैं बालिका वधू सीरियल की स्टारर एक्ट्रेस अविका गौर। हाँ जी, आप समझ गए, वही बालिका वधू की बालिका जिनका चेहरा सिर्फ एक ही सीरियल से इतना फेमस हो गया कि उनका काम हो गया, राइट। तो सुनने में आ रहा है कि एक मूवी है जिसका नाम है कहानी रबर बैंड की, राइट। उस मूवी में ये नजर आने वाली है और डेफिनेटली बॉलीवुड की तरफ एंट्री जब कोई लेता है ना तो उसके लिए एक्साइटिंग तो रहता है।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सुन ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: चलो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में वो कौन सा एक्टर है जिसे सबसे ज्यादा हिसाब रखना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट उसके ही अकाउंट में इस साल क्रेडिट हुआ है। हाँ, एज एन एक्टर उसकी फीस सबसे ज्यादा रही है। मैं बताऊं कौन सा? आप गेस नहीं कर पाएंगे, आप तो कोई ना कोई खान सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, इस बार नाम आ चुका है रणवीर सिंह का। हाँ जी, रणवीर सिंह ने धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 इन दोनों ही मूवीज में प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम किया था, और जिस वजह से उनका रेवेन्यू 3200 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अक्रॉस द ग्लोब इस मूवी ने जो काम किया है उसके जो सर्टेन परसेंटेज है उनको दिए गए।

0: तो हुए ना हाईएस्ट पेड एक्टर इन इंडिया, राइट? सो रणवीर सिंह देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

देखो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनसे पूरी दुनिया, या ये कहें बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना, वो डर डर के चल रही है। क्यों? क्योंकि यार वो पुराने चावल हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनका एक अलग पकड़ है, पहचान है। और ये जब पहचान का मामला या पकड़ का मामला आता है ना, तो सलमान खान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अगर हम सलमान खान की बात करें तो डेफिनेटली उन्हें गुस्सा आ चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ फिल्म मेकर्स ने हिम्मत करी है ब्लैक बक मूवी बनाने की, यानी काले हिरन की पूरा जो सब्जेक्ट है ना, उसमें सलमान खान को फीचर करते हुए मूवी बनाने की। एक ऐसा सलमान खान का केस जो काफ़ी साल चला, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ सहा और उन्हें बहुत चीज़ें सिखाई गईं। सो अब जो वो फिल्म मेकर हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं से ये बात कही गई थी कि आप इस फिल्म को रोक दीजिए अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, अब उन्हें मारने तक की धमकी दी जा रही है। और ये बात वो डायरेक्टर सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। सो डेफिनेटली इसके पीछे हाथ कहा जा रहा है सलमान खान का। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो तुम, तगिन दिग तगिन दिग।

क्या आप बचपन से लेकर अभी तक, मतलब व्हाटएवर योर एज, लेकिन कहा जाता है ना बचपन से लेकर पचपन तक आप लोगों से सवाल ही पूछते आए हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाए और आप अपनी नॉलेज गेन कर ले। तो मतलब आप इस टाइप के गेम शो के लिए बने हैं जो कि मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है। हाँ जी, सिंगापुर आ चुका है सबसे स्मार्टेस्ट शो, दैट इज द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें हम आपके आईक्यू लेवल अलग अलग इंटरेस्टिंग तरह से पहचानने वाले हैं। बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस, गिफ्ट, कैश आपका इंतजार कर रहा है। सो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्स्ट करना होगा हमें लायन, LION लिखकर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 9151-8963। क्विकली आप हमें मैसेज कीजिए ताकि आपको एक पूरा प्रोसेस पहुंचाया जाए और वो क्वेश्चंस पहुंचाए जाएं जिनके सही जवाब दे के आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
3: क्या जी?
4: जीजी, जीजी मार्ट, your personal grocer. Just log on to ggmartonline.com, grocery add to cart करो, check out करो और grocery at your doorstep.
3: वाजी, क्या बात जी?
4: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: देखो इस मूवी का नया पार्ट आ चुका है और उस नए पार्ट को अक्रॉस द ग्लोब प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन इस मूवी का मतलब जो 2026 में रिलीज हुई है उस मूवी का पहला पार्ट आया था 2012 में। यस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉकटेल। अच्छा आपको याद है कॉकटेल मूवी तो अपनी अच्छी थी, मॉडर्न रिलेशनशिप के ऊपर थी, लेकिन इस मूवी में आपको इतने अच्छे सीन्स दिखाए गए थे, बाहर की दुनिया दिखाई गई थी कि लोगों को ये मूवी हर तरह से अच्छी लगी। उससे भी ज्यादा इस मूवी में दो इम्पॉर्टेंट रोल रखे गए थे, दीपिका पादुकोण का और डायना पेंटी का, लेकिन जब लीड हीरो इस मूवी के लिए ढूंढा जा रहा था तो कोई भी हीरो हाँ नहीं कर रहा था, बिकॉज इस मूवी का अहम हिस्सा थे दो फीमेल एक्ट्रेसेस जो उस टाइम पे मतलब 2012 में भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ लिया नहीं जाता था। दैट्स वाई वहाँ पर एंट्री हुई सैफ अली खान की, क्योंकि उनको लगा कि यार ठीक है रोल छोटा ही सही पर इम्पॉर्टेंट तो है, बट ठीक है मूवी में जितना स्क्रीन टाइम मिलेगा उसमें अपन बेस्ट कर लेंगे। और बहुत सारे हीरो को अप्रोच करने के बाद सैफ अली खान को अप्रोच किया गया था, बट अब जब ये मूवी आई है तो उसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन नजर आ रही हैं। सो अभी तक तो माहौल चल ही रहा है, लेट्स सी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितना सक्सेस पाती है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: Are you ready?
1: Are you ready?
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

यू नो व्हाट, अगर आप अपने घर के वो शख्स हैं जो रेस्टोरेंट कौन से जाना है फैमिली डिनर के लिए वो डिसाइड करते हैं, तो मतलब आप अपने परिवार के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं। लोग आपकी बात सुन रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको। हाँ, तो चलिए 30 तारीख से पहले पहले, बिकॉज बहुत कम दिन बाकी है, अगर आप फैमिली या फिर कपल या फिर दोस्तों के साथ ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड इंजॉय करना चाहते हैं वो भी बेस्ट प्राइसेस में, तो आपको पहुंचना है रैफल सिटी सेंटर, जहाँ पे है ऑफकोर्स शाही महारानी रेस्टोरेंट। बिकॉज यहाँ का नॉर्थ इंडियन माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इतना ज्यादा फेमस है, तो आपको एडवांस में रिजर्वेशन करना पड़ेगा www.shahimaharani.com पर। एंड अभी इस वक्त इस महीने ये अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? एंड ऑन दिस ओकेजन अगर आपकी टेबल का बिल $100 होता है, तो आप बहुत सारी डिशेस $25 में अनलॉक कर सकते हैं, जैसे मुर्गी टिक्का, चिकन मक्खन वाला, पालक पनीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब वेज एंड नॉन वेज आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, सो आप $25 पर डिश का अमेजिंग ऑफर अवेल कर सकते हैं 30th जून तक। मैं आरजे अनुपम, मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी।
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
5: क्या
6: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाह जी क्या बात जी,
6: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: देखो, पुराने किस्से किसको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन हर कोई पुराने किस्से याद नहीं करना चाहता, बिकॉज उसे कई बार ना अपना नुकसान याद आ जाता है। सोचो, काफी साल पहले सलमान खान एंड भाग्यश्री स्टारर मैंने प्यार किया मूवी आई थी, और उस मूवी में किसी को काम करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे उसे मना कर दिया गया। आज भी वो एक्ट्रेस उतना ही दुख जताती है जितना जताना भी चाहिए, राइट? मैं आरजे अनुप मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड एक्ट्रेस जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग के लिए रियलिटी शोज के लिए फेमस

दैट इज उपासना सिंह, इन्हें मैंने प्यार किया मूवी ऑफर हुई थी, और सूरज बरजातिया जो है उन्होंने अच्छा खासा ऑडिशन ले लिया था और वो चाहते थे उपासना का एक इंटरव्यू उनके डैड से भी हो जाए, लेकिन वो उस दौरान हुआ नहीं और अचानक से उपासना को मना कर दिया गया। और फिर काफी साल बाद सूरज बरजातिया जी के साथ दोबारा जब वो शूट प्लेस पे थी, तब वहां पे सबके सामने एक दिन सूरज बरजातिया जी ने एज ए डायरेक्टर सबको बताया कि मैंने प्यार किया मूवी के लिए उपासना जो है ना फाइनल हो चुकी थी, लेकिन इनकी हाइट सलमान खान से ज्यादा थी जिसके कारण इन्हें एज एन एक्ट्रेस उस मूवी में नहीं रखा गया। तो उपासना को बहुत बुरा लगा बिकॉज ये रीजन नहीं हो सकता। आज भी हम देखते हैं कि सलमान खान ने कटरीना के साथ भी काम किया है, अनुष्का के साथ भी काम किया है, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जो उनसे बहुत ज्यादा है हाइट में, तो उस वक्त ये रीजन देखकर मना करना वॉज नॉट गुड। चलते रहता है ऐसा लाइफ में, है ना। चलिए चलते चलते आज शाम को 5 बजे के बाद डियर मस्ती दिल से शो जरूर ट्यून इन कीजिएगा। हम सभी आर्टिस्ट आपके लेटर्स डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे मस्ती मॉर्निंग शो पर। मी आरजे नूपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: सिंगापुर। बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
5: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
1: This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
6: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text

0: आदाब सत श्री अकाल
1: गेम जय सिंगापुर सारू जय
2: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
3: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
5: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Musti Music Cafe.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स served hot and back to back. Rika U.

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: सम शोज डोंट जस्ट प्ले, दे स्टे विद यू, एंड व्हेन आवर लिसनर्स आस्क फॉर मोर We bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
3: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
4: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
5: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: 3, 2, 1।
0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
0: करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: का पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज, Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: नाचने का मन है,
5: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
7: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: ओ सत्ते तुम भी थोड़ी जी तुम भी पा दे।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल्स।

0: डियर मस्ती दिल से, जी हाँ, ये ऐसा शो है जिसमें ये गाना विच सेज मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, बहुत मायने रखता है ये गाना। क्यों? वेल, अब से लेके 8 बजे तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम क्यों ये गाना राइट इन द बिगिनिंग चलाए हैं आज के दिन में रेडियो मस्ती 24/7 पर। डियर मस्ती दिल से, आइए तो फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के शो की। बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये शो ऐसा जहां पर आपका नाम तो छुपा रहता है लेकिन आपकी कहानी सिर्फ हम ही नहीं सब के सब हमारे लिसनर्स सुनते हैं और हमें लिखते हैं कि उनका क्या व्यू है उसके बारे में। यू नो, लाइफ हैज दिस फनी वे ऑफ टीचिंग अस, कभी कभी लोगों के थ्रू, कभी सिचुएशंस के थ्रू और कभी इमोशंस के थ्रू, एंड वी डोंट इवन वॉन्ट टू एडमिट दैट हम कुछ फील कर रहे हैं। आज हम चिट्ठियां खोलेंगे फ्रॉम लिसनर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद फ्रेंडशिप्स या कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस, या कोई स्टूडेंट्स की जिनकी प्रेशर एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की चिट्ठियां एंड साथ ही साथ में और भी इमोशंस भरी चिट्ठियां। लेट्स बी ऑनेस्ट, फ्रेंडशिप्स हर्ट कर सकती हैं, पेरेंटिंग डज नॉट कम विद अ हैंडबुक, एंड स्टूडेंट ओहो इतना प्रेशर कि पूछिए मत कितने जनरेशंस फेस कर चुके हैं। रियलिटी फिर भी एक, दैट बिहाइंड एवरी स्माइल, एवरी सोशल मीडिया पोस्ट, एवरी आई एम फाइन, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन जहां पर दिल कुछ और कहना चाहता है। दैट्स व्हाई आवर शो एग्जिस्ट्स, इट्स कॉल्ड डियर मस्ती दिल से। सारे जवाब तो शायद हमारे पास नहीं होंगे, बट बिकॉज समटाइम्स हियरिंग अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर वॉइस और सिंपली नोइंग यू नॉट अलोन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो एज ऑलवेज, रियल चिट्ठियां, रियल लोग, शेयर्ड अनोनिमसली, एंड परहैप्स समवेयर इन टुडेज स्टोरीज आपको अपनी एक छोटी सी कहानी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई मिलेगी, राइट? ये है डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जहां पर जिंदगी के सवाल बहुत ही दिल के पास ऐसी कॉन्वर्सेशंस बन जाते हैं, बट एवरी स्टोरी मैटर्स।
1: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी,
0: बस इसी जिंदगानी का नाम ये वाला शो हमारा। सही में रहिएगा हमारे साथ में, जी हाँ, 9151896 इज द टेलीफोन नंबर जहां भेज सकते हैं अपने व्यूज और अपने विचार और कभी कभी अपनी पर्सनल चिट्ठियां भी। स्टे ट्यून्ड।

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
1: एक्साइटेड
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

दिल धड़कने का भी कोई बहाना चाहिए क्या किसी को? रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज डियर मस्ती, दिल से डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो चलिए, आज हमारी टीम ने कहा कि भाई रेणुका, आप ही शो शुरू कीजिए। तो मुझे लिखी हुई ये चिट्ठी, वेल, जो हमेशा ऐसी जो चिट्ठियां होती है ना, वो दिल को वाकई बहुत ज्यादा क्लोजली छू जाती हैं। सो इट इज रिटन टू मी बाय सन। उन्होंने कहा है, आई एम राइटिंग टू यू रेणुका विद अ हैवी हार्ट बिकॉज आई फील कॉट बिटवीन लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रियलिटी। मेरी माँ जो हमेशा से बहुत ही इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट औरत रही है, इवन आफ्टर माई फादर पास्ड अवे शी इंसिस्टेड ऑन लिविंग ऑन हर ओन। मेरा भाई और मैं बाहर रहते हैं सिंगापुर में फॉर मेनी ईयर्स, बट वी हैव ऑलवेज ट्राइड आवर बेस्ट टू बी देयर फॉर हर। हम हमेशा रोज उनको फोन करते हैं, विजिट करते हैं रेगुलरली, सपोर्ट हर फाइनेंशियली, मेक आर सेल्व्स अवेलेबल वेयर एवर वेन एवर शी नीड्स अस। एक रीजन शी रिफ्यूजेस टू मूव अब्रॉड इज बिकॉज ऑफ हर हेल्थ, क्योंकि उनकी मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस हैं और वो बहुत अटैच्ड हैं अपनी डॉक्टर्स के साथ में। सो हमने बहुत बार उन्हें कहा है हमारे साथ रहो, बट वो हमेशा मना कर देती हैं। लेकिन लेटली उनकी जो हेल्थ है बहुत डिटीरियोरेट कर रही है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक, माय सन्स आर लिविंग ओवरसीज व्हाइल आई एम स्ट्रगलिंग हियर अलोन। The thing is, she never says this about her daughter. She comes from a very traditional mindset, जहाँ पर daughters are not expected to look after parents, but sons are. So the guilt lands squarely on us. What hurts is that it feels as though all the support we provided over the years is being forgotten because we are not physically there every day. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, but I cannot simply resign from my job and move back. My brother can't either. हमारी families हैं, responsibilities हैं, बच्चे हैं और commitments हैं. We are no longer young ourselves. कैसे deal करें इस guilt के साथ में? And how do we help a parent who refuses the solutions we offer but is unhappy with the situation she has chosen herself? पता है क्या? सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूँगी कि मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है इससे पहले कि हम वापस आके आपकी सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात करें। आई एम ब्रिंगिंग अप अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक विच आई पर्सनली लव एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट। आप ये सुनिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और मैं वापस आती हूँ बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज की पहली चिट्ठी के बारे में, जहां पर एक बेटे ने हमको ये लिखा है कि उनकी माँ ने जिंदगी में चूज किया है टू स्टे सेपरेटली ऑन हर ओन, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है शी इज बीइंग सार्केस्टिक अबाउट मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते और मैं अलग रहती हूँ डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव बीन आस्किंग हर टू लिव विद देम फॉर मेनी ईयर्स। डियर मस्ती दिल से, जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ पर आप ही की बातें हम करते हैं। परेशानियाँ हो, खुशियाँ हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमें लिख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स वी ट्राई अलोंग विद आवर टीम ऑफ काउंसलर्स टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस और एटलीस्ट अ डायरेक्शन एज वी मूव अहेड। डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो देखिए, ये अनजाना इंसान आपको थोड़ी सी डायरेक्शन देना चाहता है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ये चिट्ठी जो है ना, बहुत से ऐसे बच्चों के दिलों को जाके लगी है हु लिव ओवरसीज, स्ट्रगल विद, बट वेरी फ्यू टॉक अबाउट दिस ओपनली। गिल्ट जो है ना, इज द प्राइस वी पे फॉर लविंग समवन वी कैनॉट बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर। पर चलिए फैक्ट्स देखते हैं। आप और आपके भाई जो हैं एब्सेंट सन्स नहीं हैं। आप रोज़ फ़ोन करते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं, यू सपोर्ट फाइनेंशियली, इमोशनली, इनफैक्ट कई बार आपने ये भी कहा है कि हमारे साथ आके रहो। दीज आर एक्शंस ओनली ऑफ केयरिंग चिल्ड्रन। What has changed is not necessarily आपकी commitment, लेकिन आपकी मम्मी की जो स्टेज ऑफ लाइफ है ना, वो बदल गई है। जैसे जैसे लोग थोड़े से उम्र में बड़े होते हैं, वैसे ही हेल्थ जब थोड़ी डिक्लाइन करना शुरू करती है, जो एक एनजाइटी होता है, फियर होता है, वो बढ़ जाता है। द फियर ऑफ इलनेस, द फियर ऑफ डिपेंडेंसी, द फियर ऑफ लोनलीनेस, द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, एंड समटाइम्स ऐसे जो फियर्स होते हैं ना, दे कम आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो कि डायरेक्ट किए जाते हैं टूवर्ड्स द पीपल दे लव द मोस्ट। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि आपकी मम्मी दो चीजें चाहती हैं, दैट मे नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज एक तो वो अपने देश में रहना चाहती हैं, अपने घर में, अपने मेडिकल सिस्टम में जिसको वो जानती हैं, फेमिलियर हैं। दूसरी बात, वो चाहती हैं कि उनके बेटे उनके साथ रहें। लाइफ डजंट ऑलवेज अलाउ अस टू हैव बोथ, राइट? सो सारे के सारे जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं, दे गेट ट्रैप्ड इन सच सिचुएशंस, जैसे आप और हम। They keep trying to solve an important, impossible equation, और फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं। सबसे पहले stop measuring your love only by your physical presence. Presence जरूर matter करती है, but consistency, care, effort और support, वो matters ज्यादा करता है। Perhaps यही time है जब आप थोड़ा सा support network उनके around, trusted relatives हैं, neighbors हैं, community groups हैं, companions हैं, medical coordinators हैं, या शायद regular visitors भी। आपको replace तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ बातों में उनको कुछ ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हैं। और हाँ, be gentle with yourself, because there is a difference between abandoning a parent and not being able to live in two countries at the same time. You can be a loving son without sacrificing your entire life, okay? Sometimes सबसे मुश्किल चीज adulthood की पता है क्या होती है? Accepting that love alone cannot solve every problem. चलिए, यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा गाना चलाते हैं कि आप emotional भी होंगे, but at the same time मेरी बात भी समझेंगे। Stay tuned.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दूसरों की आदतें ना पसंद करना शायद नॉर्मल हो सकता है, लेकिन खुद की आदतें ना पसंद करना कुछ तो अलग है। बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड आज मेरे हाथों में जो खत है वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि खुद की कमियों को बता रहा है। हाँ जी, जिन्होंने ये खत भेजा है उसमें लिखा है कि हाय डियर मस्ती, मेरे संग एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और बढ़ती जा रही है, और ये आज की नहीं है, जब से मैं छोटी हूँ तब से ये मेरे साथ हो रहा है कि मैं खुद से ना सही, मैं दूसरों की अच्छी चीजें देखकर, उनकी अच्छी आदतें देखकर, या उनके पास कुछ बहुत ज्यादा है मुझसे ये देखकर जेलसी फील करती हूँ। और मुझे ये पता भी है कि मैं ये थोड़ा गलत फील कर रही हूँ, बट अब ये क्या करूं, आदत बन चुकी है। आदत तो बन चुकी है, लेकिन जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उनसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या आदतें बदलती नहीं है? आदत है, कोई सिंगापुर गवर्नमेंट का रूल नहीं है जिसे आप फॉलो करें ही करें। हाँ, चलिए जोक्स अपार्ट, डेफिनेटली जब आपको अपनी कमियां धीरे धीरे पता चलने लगे पर्सनली प्रोफेशनली, हाँ आई नो सबसे सिंपल चीज ही ना सबसे डिफिकल्ट होती है फॉलो करना, तो आप अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए धीरे धीरे जबरदस्ती बेमन से ऐसी थिंकिंग से ओवरकम कीजिए। जैसे ही आपको ये ख्याल आने लगे ना कि आप किसी की बेटर चीज देखकर जेलसी फील कर रहे हो, उस वक्त खुद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, अपने संग थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे और इस थॉट को तुरंत इरेज कर दीजिए। बाय द टाइम आप 6 महीने साल भर इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी ये बातें बैठने लगेंगी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर हाँ, मानो तो ठीक है, ना मानो तो कुछ नहीं बदल सकता।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: पता है आजकल मुझे लगता है कि किसी भी फीलिंग को वैसे का वैसा एक्नॉलेज कर लेना विदाउट जजिंग इट बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एक चीज है। थोड़ी देर पहले नुपुर के पास जो लेटर आया था उसमें से आई थिंक दैट वाज माय पर्सनल टेक अवे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पहले अपनी फीलिंग से ही लड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे बुरा लगना चाहिए, नहीं नहीं मैं ऐसा फील नहीं कर सकती। अरे भाई फील तो हो ही रहा है ना पहले उसे तो मान लीजिए। वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से। यस, हम वो रेडियो पे बैठे हुए स्ट्रेंजर्स हैं जो आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। मैं हूँ अंतरा और चलिए बढ़ते हैं मेरी इस चिट्ठी की ओर। ये कुछ ऐसा कहते हैं कि डियर मस्ती, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी तो मैं उसके पास गया। मैंने उसकी बात भी सुनी और उसे समझाया कि आज वो जिस सिचुएशन में है उसकी अपनी गलतियां भी उसमें काफी सारी हैं। लेकिन वो मुझसे नाराज हो गया, कहने लगा ज्ञान मत दे। सच बताऊं अब लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे लगता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी थी। आप अपने दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप उसकी हेल्प करना चाहते थे, राइट? लेकिन कभी कभी इंटेंशन और टाइमिंग ये दोनों ना बड़ी अलग सी चीजें होती है और यहाँ शायद थोड़ा सा टाइमिंग आपका मिस हो गया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मुझे उतनी ही ध्यान से सुने और खुले दिल से सुने जितना ध्यान से मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा है, ठीक है? साथ देने के समय ज्ञान नहीं देना चाहिए। डूबते हुए इंसान को बचाया जाता है, तैरना नहीं सिखाया जाता। अब इस लाइन के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या एग्जाम खराब गया है या जॉब चली गई है, उस वक्त उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, या कोई जो ये कहे कि ठीक है जस्ट टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रीदर, सांस ले ले पहले। कई बार जब इंसान इमोशनल पेन में होता है ना, उसका दिमाग ऑलरेडी उसकी गलतियां रिपीट मोड पे चला रहा होता है। उसे पता होता है कि उसने क्या गलत किया है। उस मोमेंट में उसे लेक्चर नहीं, कनेक्शन चाहिए होता है, सुनने वाले दो कान चाहिए होते हैं, वैलिडेशन चाहिए होता है। ये नहीं कि हम सच कभी भी ना बोले, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन पहले सपोर्ट करें, फिर पर्सपेक्टिव और उसके बाद एडवाइस, इसी ऑर्डर में, राइट? एक बात और, आपके दोस्त शायद आपसे नाराज नहीं थे, शायद वो उस सिचुएशन से काफी हर्ट थे और उस हर्ट का रिएक्शन आप पर आ गया। तो प्लीज इस इंसिडेंट से ये कंक्लूजन मुझे नहीं लगता आपको ये निकालना चाहिए कि भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई का जमाना आज भी है, बस कभी कभी लोगों को एडवाइस से पहले एक जादू की झप्पी की जरूरत होती है। यस, एक लिसनर, एक दोस्त जो बस उनके साथ बैठ जाए। तो मुझे लगता है आप एक अच्छे दोस्त हो, बस अगली बार जब कोई तकलीफ में हो ना, पहले उसका हाथ पकड़िएगा, उसके बाद उसे रास्ता दिखाइएगा। Hope this helps, dear listener. यह dear musti दिल से, and I think it's a दोस्ती वाला गाना I love goes out to you. Enjoy.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है।

0: मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस। डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूँ अंतरा, और चलिए यहाँ पर बढ़ते बढ़ते अपनी अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ चले। चलिए, डियर मस्ती, आई डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग माय साइंस टीचर टीचर्स इन क्लास। माय पेरेंट्स थिंक आई डोंट वर्क हार्ड इनफ, एंड व्हेनेवर आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दे से आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस। व्हाट शुड आई डू? ओके, सो माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस लेटर में दो फ्रस्ट्रेशन है, पहली साइंस से, दूसरी उस फीलिंग से कि मेरी बात कोई समझ नहीं रहा। एंड एक्चुअली दोनों ही काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं देखा जाए तो। अब जरा एक मिनट के लिए हम लोग ना आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस बात को देखते हैं। मोस्ट पेरेंट्स जब मार्क्स गिरते देखते हैं ना, या बच्चा स्ट्रगल करता हुआ उनको दिखाई देता है, तो उनका दिमाग सीधा एक ही कंक्लूजन पे पहुंचता है कि शायद मेहनत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी टेंशन होती है, वो फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं आपके, और कई बार उनकी वरी एडवाइस या डांट के फॉर्म में बाहर आती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पेरेंट्स गलत है, लेकिन ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप गलत हो। हो सकता है आप सच में मेहनत कर रहे हो और फिर भी समझ नहीं आ रहा हो। एंड बिलीव मी, ये काफी कॉमन चीज है। हर स्टूडेंट का जो है ना, एक तो लर्निंग स्टाइल काफी डिफरेंट होता है। कुछ लोग क्लास में समझ जाते हैं, कुछ लोग वीडियोस देखकर, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हुए, और कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ। अब सवाल ये है कि क्या करें। सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल स्टेप, क्लास में या क्लास के बाद अपने साइंस टीचर के पास जाइए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछिए कि मुझे इस चैप्टर में ये समझ में नहीं आता। इट्स लाइक अ होल जेनरिक यूनिवर्स आप उनको थमा रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी प्रॉब्लम पूरे सब्जेक्ट में नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट्स में होती है। दूसरी बात, खुद से भी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, लाइक go on YouTube videos, watch them, try to understand those concepts there. Notes hain, school ke resources hain, library hai, jitna ho sakta hai na explore kijiye. Ab main ye isliye nahi keh rahi ki aap prove karo ki aap sach mein sabko dikha do mehnat kar rahe ho. Main ye isliye keh rahi hu kyunki confidence ke sath baat karna aasan ho jata hai jab aap jante ho ki aapne effort dala hai. Aur phir agar phir bhi प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो अपने पेरेंट्स के पास जाइए, लेकिन गुस्से में नहीं और दमदमाते हुए रिबेल मोड पे नहीं, और उन्हें कहिए कि मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये मेरे डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट के, या तो आप मुझे ये समझा दीजिए या फिर हमें मिलकर कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा तो मैं बेटर कैसे करूँगा या करूँगी। हो सकता है सोल्यूशन ट्यूटर हो सकता है एक्स्ट्रा हेल्प हो सकता है सिर्फ एक बेटर स्टडी मेथड हो, लेकिन सोल्यूशन तभी निकलेगा जब प्रॉब्लम को मिलकर देखा जाएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि हेल्प मांगना ना वीकनेस नहीं होती है, एक्चुअली हेल्प मांगना अक्सर लर्निंग का पहला स्टेप होता है। एंड गुस्से से बात बिगड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन समझाने से कई बार वो लोग भी समझ जाते हैं जो पहले सुन ही नहीं रहे थे। तो गिव इट अ ट्राई माय डियर लिसनर, मुझे लगता है आप जितना सोच रहे हो उससे कई ज्यादा आप केपेबल हो, बस शायद आपको सही सपोर्ट और सही स्ट्रेटजी की जरूरत है। होप दिस हेल्प्स। ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

अच्छा ठीक है, बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन हम बड़े क्यों नहीं? क्यों ना अपने मन की सच्ची बातें हमें भेज दीजिए, आपके सवालों के जवाब शायद हम दे दें। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड एक और कोशिश करती हूँ। किसी का सवाल लेटर के थ्रू मेरे हाथों तक पहुंच चुका है और उस लेटर में पता है क्या लिखा हुआ है कि मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। मतलब जो काम मैं कर रहा होता हूँ उसके अलावा सारे कामों में मेरा ध्यान होता है। ऐसा क्यों? ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मैं हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये कन्फेशन होना भी बहुत जरूरी है कि आपको पता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। यू नो व्हाट, मुझे इससे एक बात याद आई। मैं भी एक टाइम पे ना लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, गलत तरह से नहीं, बस डिस्ट्रैक्टेड थी। जो मेरे गोल्स थे वो शायद मैं महीने की पहली तारीख में लिख तो लेती थी पर उन्हें पूरे महीने या पूरे साल फॉलो नहीं कर पाती थी। तो मैंने पता क्या किया, बहुत बेसिक चीज, बहुत बेसिक, एंड दैट इज मेडिटेशन। हाँ जी, अपने माइंड को ट्रेंड करने का और काम करने का सबसे बेटर तरीका, हम जिसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, राइट? सो शुरुआत में शायद 30-40 days मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन बाय द टाइम उस मेडिटेशन से मेरा जो माइंड है वो काम हो गया और मैं एक अच्छी डिसीजन मेकर हो गई। डिस्ट्रैक्शन तो छोड़िए, जो मैंने सोच लिया है ना वो मैंने सोच लिया है। सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना है, रात में टाइमली सोना है तो सोना है, इससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो आप अपनी लाइफ के जब छोटे छोटे डिसीजन सही लेने लगोगे ना, तो बड़े बड़े जो डिसीजन है ना वहां तक डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो इसका रूट कॉज है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग को काम कीजिए। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन और एनी हैवी वर्कआउट, स्लाइटली आप किसी और भी चीज से शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं, बट आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत सॉर्ट हो जाओ।

0: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आने वाले हैं।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: आप सभी का वापस से स्वागत है ऑन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ यहां पर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी अगली चिट्ठी की तरफ मैं यहां पर बढ़ती हूं, जो कहता है कि डियर मस्ती, डू वी एवर स्टॉप ग्रीविंग, डज इट गेट बेटर, इट्स बीन 10 years बट आई स्टिल फील लाइक दैट फीलिंग हैज नॉट गॉन एनीवेयर, डज इट गो। Wow. Dear listener, okay, let me okay. तो मैं आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ जो मुझे किसी ने कहा था, और ये लाइन मेरे साथ रही एंड आई काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इट विद ऑल माय माइट। वो लाइन थी कि डोंट मूव ऑन, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मूव ऑन नहीं करना है किसी चीज से, भूलना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। और पता है, जब मैंने आपका लेटर अभी पढ़ा, पढ़ते पढ़ते क्योंकि जो आप लिख रहे हैं उससे मैं फील कर सकती हूँ, मुझे भी आज तक लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। मेरे डैड यही थे और फिर एक दिन नहीं थे, और शायद फादर्स डे अभी अभी गुजरा है, इसलिए ये बात और भी ज्यादा दिल को मेरे पर्टिकुलरली छू रही है। और मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, इज नॉट दैट सी मैं सैड, ठीक है, मैं अब भी सैड होती हूँ, और इस बार इस सैडनेस से जो है भागने की जो है मैंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि इनिशियली दैट्स व्हाट आई डिड बट इट डिड नॉट वर्क एंड इट केम बैक टू मी इन अ वेरी हार्ड फॉर्म। मैं खुद को कहती रही स्ट्रांग बनना है, काम करना है, टाइम नहीं है टूटने का, टाइम नहीं है ग्रीव करने का। और आधे से ज्यादा वर्क शायद इसी सोच में मेरी निकल गया कि अगर मैं बिजी रहूंगी तो शायद ग्रीफ मुझे कैचअप नहीं कर पाएगा, शायद वो खुद ही चला जाएगा, शायद इग्नोर करने से कम हो जाएगा। लेकिन ग्रीफ की ना एक बहुत अजीब बात होती है, वो ऐसे काम ही नहीं करता। मुझे लगता है कि ग्रीफ कभी जाता ही नहीं, और जाएगा कैसे, जिस इंसान को हमने इतना प्यार किया हो, जिसकी यादें हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हो, उसकी कमी एक दिन में कैसे आप खत्म कर सकते हो, नहीं होती। बस उसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है, मे बी समटाइम्स आंसू बनकर, कभी एक पुरानी फोटो बनकर, कभी एक गाना बनकर, कोई एक स्मेल में, कभी फादर्स डे जैसे कोई एक दिन बनकर। तो अगर 10 साल बाद भी आपको उनकी याद आती है और दिल भर आता है, तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप हील नहीं हुए हो, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने उन्हें बहुत प्यार किया, और प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेट मी टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटूंगी और फिर बताऊंगी कि मैंने ग्रीफ के साथ जो है हाउ डिड आई डील विद इट, ओके, व्हाट हेल्प्ड मी, एंड शायद उससे आपकी थोड़ी सी कोई मदद हो जाए। टिल देन लेट्स लिव लाइफ, कीप लिविंग लाइफ किंग साइज, जस्ट लाइक द सॉन्ग टेल्स अस, राइट। स्टे ट्यून्ड टू डियर मस्ती दिल से।
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: love songs.
1: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
2: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. अगर जस्ट इन केस मैं हूँ अंतरा आपके साथ और अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे एक डियर लिसनर ने बहुत ही हार्टफेल्ट एक सवाल पूछा एंड आई वुड लाइक टू आंसर दैट एक्चुअली मैम दैट उनका सवाल कुछ ऐसा था दैट डियर मस्ती डू वी एवर स्टॉप ग्रीविंग डज इट गेट बेटर इट्स बीन 10 इयर्स आई हैव लॉस्ट समवन बट आई स्टिल फील Like that feeling has not gone anywhere. सच कहूं मुझे लगता है कि ये उन सवालों में से एक है जिसका जवाब हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ढूंढता ही रहता है. So, having said that, my dear listener, मैं आपसे दिल से बिल्कुल एक बात कहना चाहती हूँ. बहुत सारे लोग ना ये मान लेते हैं कि अगर इतने सालों बाद भी कोई चीज उन्हें इमोशनल कर देती है ना तो शायद वो उस लॉस को प्रॉपरली डील नहीं कर पाए हैं कि शायद उन्हें अब तक मूव ऑन कर लेना चाहिए था. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है और शायद जिंदगी भी ऐसा नहीं कहती है हमको. आपको स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आपको ये परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आप अभी भी कभी कभी सैड फील कर सकते हैं क्योंकि ग्रीफ जो है ना कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पास या फेल हुआ जाता है. इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होता. हम सभी अलग अलग हैं, राइट? हम सब अलग तरीके से प्यार करते हैं, हम सब अलग तरीके से याद भी करते हैं. इसलिए प्लीज कभी किसी को ये मत डिसाइड करने दीजिए कि आपको अपने इमोशंस के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है ग्रीफ की सबसे ब्रेव फॉर्म शायद ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दो या उसे हरा दो. शायद सबसे ब्रेव फॉर्म ये है कि आप उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो और फिर भी जिंदगी में जो करना है वो करते रहो. कीप मूविंग फॉरवर्ड. अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था. जब भी मुझे अपने बापी यानी कि मेरे फादर की मुझे बहुत याद आती है, जब भी इमोशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, मैं लिखती हूँ. आई राइट, आई जर्नल अपनी डायरी में उनके बारे में कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूँ, अगर वो यहाँ पे होते तो मैं उनसे क्या कहती. कभी सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर दिन के बारे में या फिर जस्ट यू नो शेयरिंग वॉट एवर आई एम फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि मैं पहले ऐसा करती थी, वो उस टाइम पे फोन पे होते थे, लेकिन अब वो शायद कहीं पे बैठ के कहीं ना कहीं से वो डायरी पढ़ते हैं. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव. सो राइटिंग ने मेरी बहुत हेल्प की है. पिछले हफ्ते भी मैंने किसी को यही एडवाइस दी थी और कहा था कि हमारे एक लिसनर ने भी इसका पूरा यू नो शी रियली सेड दैट जर्नलिंग ने उनके माइंड और हार्ट का क्योस भी कई तरीकों से हल्का कर दिया था. सो शी आल्सो कंप्लीटली बिलीव्स इन दैट. और मुझे लगता है कि दिस इज सच अ नाइस थिंग टू डू. क्योंकि जब थॉट सिर्फ दिमाग में होते हैं ना तो वो काफी उलझे हुए से रहते हैं, लेकिन जब वो कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें देखना, समझना, प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. तो डियर लिसनर, अगर आप चाहें आज ही एक जस्ट कहीं पर भी पेज निकालिए, एक डायरी लीजिए और जो दिल में है वो लिख दीजिए. इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, सिर्फ योर ऑनेस्ट हार्ट एंड सच्चाई. हो सकता है उसमें थोड़ा सा दर्द जो है वो बाहर आ जाए और थोड़ी सी जगह बन जाए जस्ट टू ब्रीद. Hope this helps. Really, really hope this helps. Yeah, dear Masti, Dil Se on Radio Masti 24/7 Live.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

राइट, मेरी बारी वापस आ चुकी है. रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, एंड दिस इज रेणुका विद यू. चीयर अप गाइस, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट दुख, राइट? ये सब तो है ही, जिंदगी है, तो ऊपर और नीचे, कभी ये कभी वो, तो चलता ही रहेगा, राइट? डियर मस्ती दिल से, वेलकम वेलकम. जी हाँ, इस टाइम मुझे एक ऐसी लड़की की चिट्ठी आई है जो कि अपने 20s में है, बिजी है, लाइफ अच्छी चल रही है, फ्रेंड्स अच्छे हैं. ऑनेस्टली शी सेज शी इज हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ. द प्रॉब्लम इज कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, दे सीम टू बी फार मोर कंसर्न्ड अबाउट माय मैरिज देन आई एम, स्पेशली माय पेरेंट्स. ऑलमोस्ट सारी कॉन्वर्सेशंस ऐसी लगती हैं, एक ही टॉपिक पर जा रही हैं, कीप योर आईज ओपन, यू शुड स्टार्ट लुकिंग, व्हाट इफ यू डोंट फाइंड समवन लेटर. आई वॉन्ट टू बी क्लियर, माई पेरेंट्स हैव हैड अ गुड मैरिज. मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप देखते हुए आई हैव नॉट ग्रोन अप और एनीथिंग लाइक दैट. सो इट्स नॉट दैट मैरिज केयर्स मी बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव सीन एट होम. द ट्रूथ इज मच सिंपलर, आई जस्ट डोंट फील इंटरेस्टेड राइट नाउ. I have goals I want to pursue, places I want to travel, experiences I want to have, and honestly, I don't wake up thinking about finding a life partner. Maybe it's my generation. Maybe it's just where I am in life at the moment. But the constant pressure is exhausting. Every family gathering, every wedding invitation, every conversation with relatives feels like an interview about my future marriage plans. How do I make my parents understand that not wanting to get married right now doesn't mean ki mujhe kabhi shaadi nahi karni? How do I deal with the pressure without constantly feeling guilty? And inhone sign off pata hai kaise kiya hai? Happy single, not looking. You know what?

राइट, वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती, दिल से. देवासी दल से एक ऐसा शो जहां पर आप ही की चिट्ठियां अनोनिमसली हम तक जो पहुंचती हैं, वेल हमें तो पता है आप कौन हो, लेकिन यहां पर पढ़ी जाती हैं बिल्कुल बिना आपके नाम के. एंड ऑफ कोर्स विद आवर टीम ऑफ काउंसलर्स हम कोशिश भी करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन दे सकें, एक जवाब दे सकें, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाल कर दे सकें. वेल फिलहाल ब्रेक से पहले एक चिट्ठी आई है मेरे पास. हु इज अ वेरी स्वीट गर्ल इन हर 20s एंड शी हैज़ अ जेन्युइन इशू कि भाई मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, मतलब आई नो शादी करनी है एंड मैं आई एम नॉट इवन अगेंस्ट इट, लेकिन मैं परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप पूरे टाइम मुझे यही कहते हैं.

लड़के से मिलो कैसा है, एंड यू नो इवन माई रिलेटिव्स कहीं भी जाओ एक ही बात. सो She wants to see the world, guys. She doesn't want to be, you know, शादी करके आगे बच्चे कब होंगे ये सवाल शुरू हो जाएगा. Anything. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो young adults जो आज सुन रहे हैं हमको, they will be smiling because ये वाली जो चिट्ठी है ना बहुत familiar है. There's nothing wrong with not wanting to get married, guys, in your 20s. और अगर आप करना चाहते हैं उसमें भी कुछ गलत नहीं है. Important चीज ये है that the decision should come from readiness, not from pressure. Okay? अब चलिए आपके पेरेंट्स की साइड देखते हैं फॉर अ मोमेंट. अब सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना यार, दे आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल देयर चिल्ड्रन, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. उनको लगता है अपने बच्चे की फ्यूचर हैप्पीनेस. दे कम फ्रॉम अ जनरेशन जहां मैरिजेस जल्दी हो जाया करती थी, या एटलीस्ट फाइंडिंग अ पार्टनर वॉज ऑफन सीन एज अ माइलस्टोन कि भाई ज्यादा डिले मत करो. चैलेंज है कि आपका टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन ही अलग है यार. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, विच मे साउंड परमानेंट टू देम, Perhaps try saying, I'm not ready right now, but I'm open to the idea when the time feels right. उससे ना आपके पेरेंट्स की एंजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी. एंड हियर समथिंग एल्स, यू मे नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ द प्रेशर स्टिल, क्योंकि पेरेंट्स का काम जॉब डिस्क्रिप्शन है चिंता करना बच्चों के लिए. व्हाट यू कैन डू इज स्टॉप कैरिंग अननेसेसरी गिल्ट फॉर लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस. बींग सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट नीड्स फिक्सिंग, इट्स सिंपली अ लाइफ ऑफ लाइफ स्टेज, राइट? और मैरिज जो है ना, इट शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू बिकॉज एवरीवन एल्स इज रेडी. रिलेटिव्स पूछ रहे हैं अभी उनके कपड़े तैयार हैं तो क्यों ना एक शादी पे चले जाएं, कैलेंडर कह रहा है टाइम हो गया है. ऐसे नहीं होता. जब इमोशनली रेडी हो गए ना सब कुछ हो जाएगा. सो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर पेरेंट्स कंसर्न्स, ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ योर ओन जर्नी, क्योंकि हमारा गोल जिंदगी में शादी करना नहीं है. गोल इज टू बिल्ड अ लाइफ दैट फील्स राइट फॉर यू. ये है डियर मस्ती दिल से, जहां हम मानते हैं कि लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस डिजर्व थॉटफुल टाइमिंग, नॉट सोशल प्रेशर. अगला गाना डेस्टिनी, नाम ही वही है. लवली सॉन्ग कमिंग अप जस्ट फॉर यू एंड योर जनरेशन. गुड इवनिंग.

0: Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

हमारा बबलू डब्लू ऐसे करके है ना, दुनिया कहती हमें हैप्पी बर्थडे टू यू, राइट। लिरिक्स कुछ कुछ ऐसे ही है, लेकिन इस गाने को अगर हम आज भी सुनते हैं तो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। हमारे अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग उठता है। हाँ, आप जबरदस्ती उसे छुपाने की कोशिश करेंगे तो उलझन ही होगी और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैं आरजे अनुपम, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड यहाँ मैं शो पर जिस तरह से बातें करती हूँ ना, कई बार आपको भी फील होता होगा कि यार नुपुर के अंदर भी बचपना जो है ना वो आज भी है और होना भी चाहिए। और आप तक वो बचपना ना पहुंचे तो मेरा आपसे बात करने का क्या फायदा। एनीवेज, डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो अगला लेटर आया है उसमें अपने बचपने को लेकर इन्होंने थोड़ा सा रिग्रेट फील कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक्चुअली इन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि हाय डियर मस्ती, मुझे ना बहुत एंजाइटी फील होती है जब मैं बच्चों के अराउंड होती हूँ। मतलब मुझे अपने बचपन की भी वो बातें याद नहीं है जो बच्चों को होती हैं, पर मैं दूसरों के बच्चों के आसपास भी होती हूँ ना तो मुझे बहुत एंजाइटी फील होती है। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप दूसरे बच्चों के आसपास घूमते हुए अजीब फील कर रहे हैं तो आप अपने बचपन में पहुंचिए, उसे थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए कि उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो शायद आपको बचपन में जीने का मन था और आपको जीने का मौका नहीं मिला। तो आपको बचपन की वो जो कहानियां होती है ना, बचपन का जो फील होता है ना, उसी से आपको इतना ज्यादा नफरत हो गई है कि आज आप हर बच्चे से नफरत करने लगी है या करने लगे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना मैं समझ सकती हूँ। तो बच्चे तो कितने मासूम होते हैं, हाँ, ऐसे जबरदस्ती उनके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट रखना ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एंड आई डोंट नो आपकी फैमिली कितनी एक्सटेंडेड है, आपके खुद के भी बच्चे हैं या नहीं, पर आपको अपने बचपन के बारे में सोचना चाहिए, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव फील देना चाहिए। शायद आप अपने आसपास के बचपन की जो पॉजिटिविटी है उसे

100 बार करेंगे, वो गलत चीज सही तो नहीं हो जाती ना। एनीवेज, मैं आरजे नूपुर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। अभी जो मेरे हाथों में लेटर आया है ना, उन्होंने अपनी एक गलती बताई है और शायद वो इस गलती का रिग्रेट भी कर रही है। डेफिनेटली आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। अभी जिनका लेटर मेरे पास आया है, उन्होंने लिखा है, हाय डियर मस्ती, मेरी ना एक आदत है, मैं दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ या फिर कुछ कलीग्स के साथ डिनर पे, लंच पे या कभी भी कहीं जाती हूँ तो मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अपने हिस्से का बिल नहीं देती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो एक थ्रिल है किसी और के खर्चे पे खुद इंजॉय करके आना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। एंड डेफिनेटली जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, ये सही नहीं है। अच्छा सोचिए, आपने जिस पार्ट पे ध्यान नहीं दिया होगा वो ये भी हो सकता है कि आपके पीछे जिस ग्रुप के साथ आप जा रही हैं, जहाँ बैठ रही हैं, जिनका खर्चा करवा रही हैं, वो आपके लिए क्या सोचते होंगे कि अरे यार उसको फिर से लेकर जाना पड़ेगा क्या, वो कभी भी अपना कॉन्ट्री नहीं देती यार, अच्छी बात नहीं है, उसको नहीं लेके चलते। अगर उन्होंने ऐसा आपके बारे में बोला होगा, डेफिनेटली कभी ना कभी तो बोला होगा, ये क्वेश्चन उठा होगा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो चलो, आपके पास एक तरीका है इन सारी चीजों को कंक्लूड करने का। ये जो आपकी आदत है ना बिल ना देने की और इंटेंशनली कोई बहाने बनाने की, तो एक बार के लिए वो सारे लोग जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है उनको धीरे धीरे ना सबको छोटी छोटी सी ट्रीट दो, कोई मौका ढूंढो। आपका बर्थडे हो सकता है, कोई अच्छा माइलस्टोन हो सकता है, कोई और सेलिब्रेशन हो सकता है, आप उस सेलिब्रेशन के लिए उन्हें बुलाइए और ए टू जेड वो सारे खर्चे बजट फ्रेंडली तरीके से आपका जितना पॉकेट अलाउ करे वो आप कीजिए। और अपने ऊपर ये जो आदत वाला एक छोटा सा मार्क लग गया है ना, इसको हटाइए। फिर आपके अंदर जो रिग्रेट आ रही है, ये वाला क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये बहुत कम हो जाएगा।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड।
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अंतरा यहाँ पर आपके साथ। यस, हम रेडियो के आपके वो दोस्त हैं जो आपकी चिट्ठियां यहाँ पर डियर लिसनर के उसमें पढ़ते हैं और आप हमें लिखते हैं डियर मस्ती करके, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए अगले लेटर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए। डियर मस्ती, रिसेंटली आई सॉ एन एल्डरली लेडी गेटिंग एंग्री एट अ मदर ऑफ टू ऑन अ बस। The children were crying loudly. The mother already looked stressed and flustered, and on top of that, she got scolded for not knowing how to manage her kids. I stepped in and helped her, but it made me wonder, shouldn't older people understand such situations better? I feel really nice at this point of time, not because of the situation, but for people for opening up their hearts like this, with coming up with these situations and sharing it with us, because kitni baar aisa hota hai humne ye sari cheeze shayad kahin pe witness ki ho and we would have asked this question to ourselves at that point of time, but bas wo utna sa hi reh gaya. So well, coming back to this one, my dear listener, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उस moment में जो आपने किया, that was really, really good that you extended your hand और आपने उनकी मदद की। कभी कभी किसी problem को solve करने से ज्यादा important होता है किसी को ये feel करवाना कि वो उस चीज में अकेला नहीं है, और शायद उस mom को उस वक्त वही चाहिए था। अब आपके सवाल पे आते हैं, that shouldn't older people understand better? Ideally, शायद हाँ, लेकिन रियलिटी ना थोड़ी सी आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है। एज हमेशा ना एम्पैथी की गारंटी नहीं होती है, जैसे यूथ हमेशा इमैच्योरिटी की गारंटी नहीं होती है। हम सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि उस एल्डरली लेडी ने अपने बच्चों को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरमेंट पर रेज किया हो, हो सकता है उनके टाइम पर एक्सपेक्टेशंस अलग रही हो, हो सकता है वो खुद किसी स्ट्रेस में हो उस वक्त, या हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ सिचुएशन देखी हो, उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं। एंड ऑनेस्टली हम सब कभी ना कभी ये गलती कर देते हैं, राइट? हम बिहेवियर देखते हैं, उसके पीछे क्या स्टोरी है वी डोंट वांट टू नो। हम रोता हुआ बच्चा देखते हैं लेकिन पूरी रात नहीं सोई हुई अगर माँ है उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन अगर देखते हैं लेकिन उसके पीछे की एग्जॉशन जो है वो नहीं देखते हैं। और शायद यही एम्पैथी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, जो दिख रहा है उसके आगे देखना। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग उन जॉब्स में से है कि जहां लोग बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं। अगर बच्चा बहुत लाउड है तो प्रॉब्लम, बहुत क्वाइट है तो प्रॉब्लम, स्ट्रिक्ट हो तो इशू, सॉफ्ट हो तो इशू। बीच में जो पेरेंट होता है ना, वो बस अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए कभी कभी हमें एडवाइस देने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि डू वी नो द होल सिचुएशन, राइट? यू मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस, क्योंकि कई बार लोगों को क्रिटिसिज्म की नहीं कंपैशन की जरूरत होती है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू डिड एग्जैक्टली दैट, अ हेल्पिंग हैंड, अंडरस्टैंडिंग स्माइल। और शायद एक मॉम को यह एहसास किया कि उसकी साइड पर भी कोई है। तो डियर लिसनर, हो सकता है उस एल्डरली लेडी ने भी अपनी जगह से जो भी समझा हो, हो सकता है वो मॉम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश उन्होंने आई एम श्योर की है। जिंदगी में कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां विलन कोई नहीं होता है, बस एम्पैथी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। और शायद हम सब थोड़ी नहीं, काफी और एम्पैथी अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? आई होप दैट दिस इज what you wanted to hear. Hope this helps. Yeah, dear Masti, Bill say on Radio Masti 24/7 Live.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: और इसी के साथ आज के डियर मस्ती दिल से का सफर बस यही खत्म होने वाला है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। आज इस शो पे हमने कितनी अलग अलग तरह की जो है कहानियां सुनी, चिट्ठियां पढ़ी, किसी ने जलसी को लेकर अपना दिल खोला तो किसी ने दोस्त को समझाते समझाते खुद को गलत समझ लिया, कोई साइंस समझना चाहता था पर उसकी बात कोई नहीं समझ पा रहा था, कोई 10 साल बाद भी अपने किसी अपने को याद करके इमोशनल हो जाता, किसी को रिलोकेशन का डिसीजन परेशान कर रहा था तो किसी को बचपन से एंजाइटी फील होती है उस प्रॉब्लम से डील करना नहीं आ पा रहा था, कोई जानबूझकर बिल देने से बच रहा था और समझना चाहता था कि वो ऐसा क्यों फील करता है। और हमने ऐसे मॉम की भी बात की जो अभी थोड़ी देर पहले जो चिट्ठी दी कि बस में दो रोते हुए बच्चों के साथ अपनी पूरी कोशिश कर रही। और पता है इन सब लेटर्स में एक चीज कॉमन थी, इंसान, बस इंसान। कभी जेलस, कभी कंफ्यूज्ड, कभी हर्ट, कभी एंशियस, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी बिल्कुल टूटने के करीब। और मुझे लगता है कि इसी का नाम जिंदगी है। हम सब अपनी अपनी कहानियों में लीड रोल निभा रहे होते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपनी कहानी में उतनी ही मुश्किल लड़ाई शायद लड़ रहा हो। इसीलिए शायद उसका थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी एम्पथी, थोड़ी सी काइंडनेस दुनिया को और हमें दोनों को बेहतर बना सकती है। और अगर आज किसी भी लेटर में आपको अपनी झलक नजर आई हो तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं इसमें। बहुत लोग वही फील कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बस हर किसी की कहानी का नाम अलग है। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लिसनर्स को जो हमें हमेशा लिखते हैं, अपना ट्रस्ट हमें देते हैं। आप जब अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं तो वो सिर्फ एक लेटर नहीं होता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, विच वी ट्रूली ट्रूली ट्रेजर। अगर आप भी हमें इसी तरह लिखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर किसी भी ईमेल आईडी से आप भेज सकते हैं listener@radiomasti.com.sg पर। आपकी आइडेंटिटी, वी प्रॉमिस, हमेशा अनोनिमस रखी जाएगी, बस आपकी बात हम तक पहुंचनी चाहिए। मैं आरजे अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ आरजे नुपुर एंड रेणुका एज वेल, फिलहाल के लिए हम लेते हैं इजाजत। आप यूं ही सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ये था डियर मस्ती दिल से और आप इस शो को सुन रहे थे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जिस चीज पर हाथ रखे वो सोना बन जाए, क्यों ना आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेब जय, सिंगापुर सारू जय, अखा सिंगापुर मारू जय। एक बार फिर से समर आ गया है लेकर लेजेंड्स। आज अचीवर सीरीज में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनके बारे में आपको क्या बताऊँ। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें द स्टील मैन के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये बोलते ही आप भी समझ गए होंगे कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ, आपको मिलवाने वाला हूँ, उनकी जिंदगी का सफर तय करवाने वाला हूँ, जिन्हें हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण मित्तल, यानी एलन मित्तल, द स्टील किंग, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया है और इंडियंस का सर फख्र से ऊंचा किया है। लक्ष्मी जी का जन्म हुआ जून 15, 1950 सादुलपुर राजस्थान में, एक ऐसे परिवार में जहां एक घर में 25 फैमिली मेंबर्स रहा करते थे, और लक्ष्मी जी ने अपना बचपन फर्श पर दरी बिछाकर सोकर निकाला है। लेकिन फिर साहब उनके फादर ने डिसाइड किया कि वो कोलकाता मूव कर जाएंगे, और वहां जाकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और उन्होंने एक स्टील मिल वहां डाल ली। लक्ष्मी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन स्कूल के बाद वो अपने फादर के साथ मिल में भी काम किया करते थे। लक्ष्मी जी की जिंदगी में रुकावटें तो बहुत आईं, लेकिन वो कभी इन सब चीजों की वजह से रुके नहीं। स्कूल के बाद उन्होंने कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज में जब एडमिशन लेना चाहा तो उनको कॉलेज ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हुई थी। लेकिन उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन मिला और उन्होंने कॉलेज टॉप किया और फर्स्ट क्लास के साथ उन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की। अच्छा, उस वक्त भी कॉलेज की पढ़ाई करते करते उन्होंने फादर की स्टील मिल में एज अ ट्रेनी काम भी किया। लेकिन फिर लक्ष्मी मित्तल साहब ने ठाना कि वो भारत से बाहर जाएंगे। लेकिन विदेश में जाकर वो क्या करना चाहते थे, ये आपको बताते हैं थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में आज

0: मन्नु लेट्स गो।
1: चलो अब चले गए, प्रश्न नहीं उठता, मैं तो सो ही जाता।
0: अरे बाहर निकलो।
2: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
0: ये आप बंद करो।
2: सॉरी
0: टोकरी कमा लो। जगह कैसी है?
2: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
0: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
2: और भला क्या काम हो सकता है?
0: और बहुत से काम हो सकते हैं।
2: जैसे?
0: कर सकोगे?
2: मैं हर काम कर सकता हूँ।
0: सोच लो।
2: सोच लिया।
0: और अगर नहीं कर सकी तो?
2: हार मान जाऊंगा।
0: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
2: क्या?
0: हाँ अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
2: टोकरी?
0: मंजूर।
2: मंजूर, काम तो बताइए।
0: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो वो?
2: हाँ।
0: क्या?
2: मुर्गी।
0: हाँ पकड़ लाओ।
2: मुर्गी?
0: हाँ।
2: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ, ये लीजिए।

0: डॉग रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की जिंदगी के सफरनामे से। इनकी स्टोरी बिल्कुल रैक्स टू रिचेस वाली कहानी है। लक्ष्मी जी जिस जगह पैदा हुए थे वहाँ उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, और उन्होंने एक बड़ा प्यारा किस्सा शेयर किया एक इंटरव्यू में, जो ये जताता है कि वो एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया कि हालांकि उनकी फैमिली हर हफ्ते मूवी देखने जाया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने आधे बचपन तक कभी रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखा था। और जब वो 14 साल के थे वो पहली बार किसी रेस्टोरेंट में गए, और वो रेस्टोरेंट था कोलकाता का पार्क स्ट्रीट का रेस्टोरेंट ट्रिंकलेट्स। वो बताते हैं कि वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग लम्हा था और आज तक है। जबकि आज तो वो वक्त है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 16 साल के लक्ष्मी मित्तल ने 1976 में डिसाइड किया कि वो इंडोनेशिया जाकर स्टील का काम करेंगे, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्शन पर काफी कंट्रोल कर लिया था और उन्हें काम करने की फ्रीडम कुछ कम महसूस हुई। फाइनली वो इंडोनेशिया पहुंचे और वहां उन्होंने स्पात इंडो के नाम से एक अपना स्टील प्लांट शुरू कर दिया और 10 साल तक उसे बड़ी ही इफिशियंटली चलाया। और फिर उन्होंने ट्रिनिडेड और टोबैगो में स्टेट ओन्ड स्टील वर्क्स की वो कंपनी खरीदी जो बहुत भारी लॉस में चल रही थी, लेकिन ये खुद अपने आप में एक बहुत रिस्की डिसीजन था। आपको क्या लगता है कि इन लॉस में चल रही कंपनीज का फ्यूचर लक्ष्मी मित्तल के हाथों में सेफ रहेगा? क्या होगा बता

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: लेजेंड्स की अचीवर सीरीज में एक बार फिर से कर रहा हूं आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं स्टील किंग एलन मित्तल साहब की। जी हाँ, वही जिनमें ये गुण था कि वो स्टील को भी छू लें तो सोना बना देते थे। द स्टील मेकर लक्ष्मी मित्तल। 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिडेड और टोबैगो में वो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स खरीदी जो एक दिन में $1 मिलियन का लॉस दे रही थी। एक दिन में $1 मिलियन का लॉस, और इस सिचुएशन में US कंसल्टेंट्स और जर्मन एक्सपर्ट्स भी कोई सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन जब लक्ष्मी मित्तल ने इन कंपनीज को खरीदा तो वाकई मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया, और धीरे धीरे लक्ष्मी जी ने खुद पर भरोसा रखते हुए पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और इसी तरह दुनिया भर की ऐसी ही लॉस में चल रही फर्म्स एक्वायर कर ली और अपने एफर्ट्स की वर्थ प्रूव की। इस एक्विजिशन की लिस्ट में शामिल थे बड़े बड़े नाम। 1992 में सिरकास्टा, जो कि मेक्सिको की थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर थी, कजाकिस्तान की स्टेट ओन्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस प्लांट, और 1995 में एक स्टील प्लांट इन यूरोप जर्मनी, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपनीज स्पात इंटरनेशनल लिमिटेड एंड स्पात शिपिंग टू असिस्ट द ग्रुप। तो साहब, मित्तल साहब की फिलोसफी उस वक्त काम आई जब एक इंडस्ट्री वीक पड़ रही थी। हालांकि स्टील डिमांड उस वक्त काफी ज्यादा थी, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज अपने मेजर क्लाइंट्स के साथ डील स्ट्राइक ही नहीं कर पाती थी, और मित्तल साहब ने इस कमजोरी की नब्ज पकड़ ली और जल्द ही उनकी कंपनी एक और बड़े एक्विजिशन के लिए तैयार हो गई थी, which further took his steel business to the next level. हाँ भाई, जमर के साथ मैं भी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा, यानी अगले गाने की तरफ और उसके बाद अगले किस्से की तरफ। एलन मित्तल साहब की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

0: समझे
1: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: आधा kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू, किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाजी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और आज मैं आपको सुना रहा हूं लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की कहानी लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब का ये मानना रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप इमोशंस अवे, एंड आई गेस इनके बिजनेस में इसी चीज ने इन्हें एक पुश दिया है, क्योंकि इनके लॉस में चल रही कंपनीज को अक्वायर करने के डिसीजन से ये क्लियरली लग रहा है कि ही ऑलवेज थिंक्स विद हिज ब्रेन्स एंड नॉट द हार्ट व्हेन इट इज अबाउट बिजनेस। एलन मित्तल साहब की कंपनी ने अमेरिकन मार्केट में अपनी काफी अच्छी जगह बना ली और 40% मार्केट को उनकी कंपनी कंट्रोल करती थी। एंड दे सप्लाइड स्टील फॉर कार मेकिंग टू द अमेरिकन मार्केट, जिसकी वजह से वो दिमाग से नेगोशिएशंस कर पाते थे। 2004 में लक्ष्मी मित्तल ने अपनी कंपनी स्पात इंटरनेशनल और LNM होल्डिंग्स को मर्ज किया और एक ओयो बेस्ड इंटरनेशनल स्टील ग्रुप को परचेज कर लिया। इस नई कंपनी को नाम दिया गया मित्तल स्टील कंपनी NV, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील मेकर। और 2 साल बाद 2006 में मित्तल साहब की कंपनी ने एक और मर्जर देखा, जब मित्तल स्टील का नाम जुड़ा विद आर्सेलर टू फॉर्म आर्सेलर मित्तल। स्टील बिजनेस के साथ इनकी कंपनी ने और भी कई काम शुरू किए, जैसे शिपिंग, कोल, पावर एंड ऑयल एंटरप्राइजेस। लेकिन आगे जाकर इनकी कंपनी आर्सेलर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या रही वो मुश्किलें जिनका सामना लक्ष्मी मित्तल करते चले गए और कभी अपने काम पर उन मुश्किलों का असर नहीं होने दिया, जानेंगे थोड़ी ही देर में ऑन द शो लेजेंड्स।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। लेजेंड्स पर आप हैं समर के साथ और आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की, द स्टील मेकर, जिनकी जिंदगी में रुकावटें बहुत आईं, लेकिन उन्होंने उन रुकावटों को फुल स्टॉप न मानकर कॉमा ही माना और आगे बढ़ते चले गए। जहां लक्ष्मी मित्तल दुनिया भर में माने जाते थे इस बात के लिए कि वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एक्सीलेंट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज के थ्रू, वहीं 2001 में मित्तल स्टील को एक नई परेशानी का सामना भी करना पड़ा जब उन्होंने अपनी आयरिश स्टील प्लांट बंद करने का फैसला लिया और फिर उनकी कंपनी को कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कई बार मीडिया ने उनकी लेविश लाइफस्टाइल को लेकर भी कई सवाल और कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मित्तल साहब का तो मानना रहा है कि मीडिया का तो काम ही है टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज। वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी तरह से। इसे कहते हैं पावर ऑफ नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय एनीथिंग। और बातें कितनी भी होती रहे, लक्ष्मी मित्तल कभी इन बातों का असर अपने काम पर नहीं होने देते। लेजेंड शो पर आप हैं समर के साथ और मैं आपसे
2: You are tuned into Radio Mighty 24/7 Live, keeping you entertained on the go.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल से मिलवा रहा हूं, मैं समर, और आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टील मैन लक्ष्मी नारायण मित्तल के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं ना, जो आपके नाम का मतलब होता है उसमें इतनी पावर और एनर्जीज होती है कि इंसान की पर्सनैलिटी उसके काम के मतलब से काफी अफेक्ट होती हैं, और लक्ष्मी जी का जैसा नाम है उस बात से ये कही गई बात काफी हद तक प्रूव हो जाती है। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज और बिजनेस का फ्यूचर देखने के टैलेंट के जरिए आज वो अपने फैमिली बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जा चुके हैं, और इसी वजह से आज उनकी वर्थ 1,180 crore US है। बट नथिंग कम्स इजीली भाई साहब, क्योंकि हर चीज की कीमत है। जहाँ उन्होंने अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, वहीं उनकी इस कमाई को वो जहाँ चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ हैं, शायद इस बात की कीमत रही है कि he has been a media's favorite who questioned his lifestyle all the time। लक्ष्मी जी का इस बारे में सिर्फ एक ही बात कहना है कि एक हद के बाद पैसा आपके लिए गैर मामूली हो जाता है। And I bet that he has earned the right to make his statement। जब उन्होंने लंदन में किंसिंगटन पैलेस गार्डन्स खरीदा, तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो दुनिया का सबसे महंगा घर खरीद रहे हैं। उन्होंने घर देखा और उनकी फैमिली को वो पसंद आ गया, और उन्होंने उस मकान को खरीद लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दिस। थोड़ी देर में मैं आपको लक्ष्मी नारायण मित्तल जी के घर के अंदर लेकर चलूंगा। आप

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब की कहानी। एलन मित्तल साहब ने 2004 में लंदन की सबसे एक्सपेंसिव लोकेलिटी केंसिंगटन गार्डन पैलेस में घर खरीद लिया और दुनिया चौंक गई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त का दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदा था, जिस पर लोगों ने बातें भी खूब बनाई। लेकिन भाई बात साफ है, उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल, उनका पैसा और उनका घर खरीदने का डिसीजन सिंपल है, वही खरीदेंगे। भाई अगर कोई हॉलीवुड स्टार ये एक्सपेंसिव घर खरीदता तो शायद हमने इस तरह से इस स्टेप को कंडेम नहीं किया होता। लेकिन क्योंकि ये कदम लंदन में रहने वाले एक भारतीय ने लिया तो पूरी दुनिया को आजादी मिल गई कुछ भी कहने की, बात करने की, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की। नॉट फेयर, नॉट एट ऑल। आई थिंक रादर ये एक बड़ी ही फक्र की बात है। आपको पता है घर कितना मैजेस्टिक है? वेल ऑफ कोर्स, जब ये कभी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर था तो मैजेस्टिक तो होगा ही। 128 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया ये घर। इस घर के अंदर 12 बेडरूम्स समाये हुए हैं, जहां हर बेडरूम में रॉयल टर्किश बेड्स लगे हुए हैं। एक आलीशान डाइनिंग हॉल है और घर में ही स्विमिंग पूल भी है। और इस मेंशन की खास बात यह है कि इसमें जो मार्बल्स लगे हुए हैं वो ताजमहल में जिन मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ है उसी क्वालिटी के मार्बल्स हैं। और इसी वजह से इस मेंशन को ताज मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑफ कोर्स, जब ये एक एक्सपेंसिव लोकेलिटी है लंदन की, तो यहाँ लंदन के नामी गिरामी लोग रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कभी यहाँ प्रिंसेस डायना रहा करती थी और ये घर बर्नी एक्लिस्टोन का हुआ करता था, जो फॉर्मूला वन रेसिंग का बॉस हुआ करते थे। और ये घर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था एंड लेटर ऑन लक्ष्मी मित्तल को बेच दिया।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स और आज मैं समर आपको मिलवा रहा हूँ स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल साहब से। ऑफ कोर्स वो फिजिकली हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनकी बातें हमारे शो पर हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास करा रही हैं। फेरी टेल वेडिंग जो कहा जाता है वो सिर्फ कहा नहीं जाता, किया भी जाता है। जब एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि बेटा मैं तेरी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ तो वो पूरी कोशिश करता है अपने वादे पर खरा उतरे। और जब यही वादा लक्ष्मी नारायण मित्तल अपनी बेटी वरीशा मित्तल से करते हैं तो वो कोई भी कोशिश अधूरी नहीं छोड़ते। वरीशा मित्तल की शादी दुनिया की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग्स में से एक है, जहां 1000 गेस्ट्स को इंडिया से पेरिस फ्लाई करवाया गया था और लग्जरी होटल्स के 600 रूम्स बुक्ड थे। 24 आवर स्नैक बार के साथ होटल ग्रैंड इंटरकॉन्टिनेंटल का फर्स्ट फ्लोर ब्यूटी सलून बना दिया गया था, जहां एक्सक्लूसिव टेलीविजन चैनल्स चल रहे थे ब्रॉडकास्टिंग द वेडिंग प्रिपरेशंस। 38 शेफ्स ने 100 से ऊपर के खास खाने प्रिपेयर किए थे। वरीशा के कॉस्ट्यूम्स इंडिया के डिजाइनर्स तरुण ताहलियानी, सुनीत वर्मा और अबू जानी संदीप खोसला ने तैयार किए थे और संगीत की तैयारी बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फरहा खान ने करवाई थी। यही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए काइली मिनोग, अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय को बुलाया गया था। साथ ही साथ शाहरुख खान और जूही चावला ने एक स्पेशल गिग से सभी गेस्ट्स को खूब हंसाया। हालांकि द फादर ऑफ द ब्राइड लक्ष्मी नारायण मित्तल नहीं चाहते थे कि ये शादी एक मीडिया अफेयर बने, लेकिन उन्होंने शादी को कवर करने के लिए एक बॉलीवुड डायरेक्टर को हायर किया था और वेडिंग की कुछ ही पिक्चर्स मीडिया को भेजी गई थी फॉर कवरेज। मुंबई से आर्टिस्ट्स को पेरिस फ्लाई करवाया गया था मंडप लगवाने के लिए। हॉलैंड से फ्लावर्स आए थे, कोलकाता के फेमस शेफ मुन्ना महाराज को कोलकाता से फ्लाई करवाया गया। साथ ही संगीत परफॉर्मेंस के लिए जावेद अख्तर साहब ने एक स्किट लिखा जिस पर पूरा मित्तल परिवार परफॉर्म करने वाला था, जिसने किया। और इस शादी की एक और खास बात ये रही कि एंगेजमेंट का फंक्शन पैलेस ऑफ वर्साइल्स में हुआ, जहां आज तक किसी शादी की परमिशन नहीं दी गई थी। एंड दिस प्रूव्स हाउ पावरफुल लक्ष्मी नारायण मित्तल वॉज, के फॉरेन लैंड में होते हुए भी ऐसी चीजें भी वो मैनेज कर रहे थे। ऑल इन ऑल दिस वॉज मोर देन अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, जो जिस किसी ने भी अटेंड की उसकी जिंदगी का इकलौता ऐसा एक्सपीरियंस विटनेस किया होगा, नो मैटर हाउ बिग दैट पर्सन माइट हैव बीन। लक्ष्मी नारायण मित्तल का मानना है कि बेटी की शादी एक बार होती है और आप ये सभी खर्चे एक बार करते हैं।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा।
4: हाँ जी जी।
3: 1/2 kg मसूर दाल।
4: जी जी।
3: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: रेडियो 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूँ समर। और लेजेंड्स पर आज हैं आप लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब के साथ, मतलब उनकी हम कर रहे हैं बात। लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब इज अ फैमिली मैन, जो कि उनके एक्ट से पता लग जाता है वो अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हिमसेल्फ वो फुटबॉल, क्रिकेट और रेसिंग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि इस शौक की वजह से उन्होंने फुटबॉल क्लब क्वींस पार्क रेंजर्स FC के 34% स्टेक खरीदे हुए हैं। खाने में वो बटर चिकन या बटर पनीर पसंद करते हैं, जो ये जता देता है कि वो भले ही सालों से इंडिया से बाहर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का इंडियन अभी बाहर नहीं गया है, उनके अंदर ही है। उनके पास भले ही फ्लीट ऑफ कार्स हैं, जेट हैं, यॉट हैं, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल अपनी लग्जरी बसेस में करें। और लग्जरी बसेस भी ऐसी हैं जिनमें हर वो फैसिलिटी है जो कि किसी भी 5-स्टार होटल रूम में होती है। फर्नीचर से लेकर कार्पेट्स तक, रूम के साथ बाथरूम भी है और साथ ही बस में कार पार्क करने की स्पेस भी है। हालांकि इन बसेस की वैल्यू $1,00,000 है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बसेस को कस्टमाइज करवाया हुआ है। और जब लक्ष्मी मित्तल से किसी ने पूछा कि उनकी वीकनेस क्या है, तो उनका कहना था कि उनका काम और इंडस्ट्री ही उनकी वीकनेस है। वो कहते हैं कि अब वो सिचुएशन नहीं रही कि वो पैसे के लिए काम करें, अब वो काम करते हैं तो स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हम भी आगे बढ़ते हैं शो पर, आप सुन

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। लेजेंड्स पर आप हैं मैन ऑफ स्टील या स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की कहानियां सुनते हुए समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2002 में मित्तल साहब को 8th richest man ऑफ ब्रिटेन का खिताब मिला था, लेकिन वो ब्रिटेन के सिटीजन नहीं है। आज भी उनके पास इंडिया की ही सिटीजनशिप है, क्योंकि उन्होंने वहां की सिटीजनशिप ली ही नहीं है इतने सालों में। In 2001, Forbes placed Mittal as the 6th wealthiest person in the world. और 2015 में रिसेशन के बाद वो अपनी ये पोजीशन रिटेन नहीं कर पाए और फिर पहुंचे वो 82nd रैंक पर ऑन द लिस्ट ऑफ वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। 2015 में ही फोर्ब्स की लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड में लक्ष्मी मित्तल साहब वॉज रैंक्ड ऑन द 57th स्पॉट। इतना कमाने की दौड़ में उन्होंने सिर्फ लिया ही नहीं बल्कि काफी कुछ दिया भी है। स्पोर्ट्स की फील्ड में उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने मित्तल चैंपियनशिप ट्रस्ट सेटअप किया है टू सपोर्ट 10 इंडियंस हु कैन कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल। लंदन के ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में उन्होंने आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, 15 million pounds इसके लिए उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन को बहुत हैंडसम अमाउंट डोनेट किया है और उनके बड़े दिल की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2001 में उन्हें डॉस्ट्राइक 1 अवार्ड दिया गया बाय द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। स्पेन में ही वॉज अवार्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ सिविल मेरिट। लंदन में ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ किंग्स कॉलेज। 2014 में ही रिसीव्ड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड फोर्ब्स ऑनर्ड हिम विद द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। करेंटली वर्किंग एज द सीईओ ऑफ ArcelorMittal, द फायर इन हिम स्टिल लाइट्स अप पीपल अराउंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के शो पर आपको खुदा हाफिज बोलने से पहले लक्ष्मी मित्तल साहब की कही एक बात आपको कोट करना चाहूंगा जो हम सब के लिए हमारी जिंदगियों में फायदेमंद होगी, मोटिवेट करेगी। ही बिलीव्स ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज दैट अपीयर व्हाटएवर दे माइट बी। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, इसी वादे के साथ के फिर मिलूंगा। और कुछ वादे आपसे चाहूंगा कि कहिए आप क्या आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो आप

0: कोई बचा ले।
1: चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा।

करवाए। बीवी बिगड़े शौहर अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े।

जाने तो मन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

दी खुशी पर लौट के आए आए रे आए रे आए रे आए रे आए। पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार जहां चारिया।

0: सत्तर 90 पो 80 90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो आपके

आहा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत देन चलैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
3: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: सी बिल्लो,
1: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
0: जो भी देखे यही पूछे है ये किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: टॉमी, टॉमी कौन?
2: अरे हम कोई भी सही, पर अभी आप गिर जाती तो हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी।
1: खाई मुझे तो दिखाई नहीं देता।
2: माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा।
1: नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, आपने तो मेरी जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं।
2: आप मुझे कैसे पहचानेंगी, वैसे मेरा नाम अमजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ, यूं समझ लीजिए परदेसी हूँ।
1: अच्छा, फिर तो आपके दो नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी।
2: अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए, जब तक आप मुझे जानते नहीं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है। लेकिन आपसे एक बात कहूं?
1: कहीं ना,
2: इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए।
1: मैं अकेली नहीं थी, नौकर था, लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना, और उसके पीछे पीछे वो भी चला गया।
3: कैसे निकट्टू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी, ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता, टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है।
2: हम कहते हैं कि आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती हैं।
3: अकेले कहाँ छोड़ा साहब, ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे।
2: चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
1: नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर।
4: वो सामने हमारा बंगला है साहब।
2: अच्छा, जरूर आऊंगा। नमस्ते।

0: माला किसके लिए बना रही हो?
1: ऐसे
0: ऐसे कहीं वो तो नहीं आ रहे हैं?
1: वो कौन?
0: वही परदेसी बाबू।
1: मार खाएगी तुम उसे, भाग जा।
0: ठीक है हम जाते हैं, लेकिन कहीं वो परदेसी बाबू में कि हमारी दीदी माला लिए बैठी है।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

दिन की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके सामने OTT प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन पर कुछ चल रहा हो और आप उसे देखकर फ्रीज हो जाओ? मेरे साथ ऐसा हुआ। यू नो व्हाट, स्टूडियो एंटर करने से पहले मैं टीवी स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पे कुछ लगाकर बहुत इंपॉर्टेंट देख रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्लाइमेक्स चल रहा था, हाँ ऑफिस में, और मेरा ध्यान इस बात से हट गया कि अरे मुझे तो स्टूडियो में जाकर शो करना है, आपसे बातें करनी है। हो जाता है, मतलब वो होता है ना कि क्लास के बैक बेंचर्स जब ऐसे प्रोफेशनली काम करने लगते हैं ना, तो कभी कभी ध्यान भटक जाता है, समझा कीजिए। सो चलिए, मैं आज नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर ऑन दिस नोट काम में बिल्कुल भी ढीलापन ना डालते हुए बहुत सारी बातें लेकर, और हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गॉसिप इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आ चुकी है। तो बातों की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं थोड़ी सी देर में कि अब प्रेगनेंसी का र्यूमर किसके अराउंड घूम रहा है, और पिक्चर्स वीडियोज सब कुछ निकल निकल कर आ चुकी है। इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड, डोंट गो एनीवेयर।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
0: लास्ट ईयर याद है आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने शादी करी थी। हाँ, तो अब धीरे धीरे से वो कहते हैं ना कि सेकेंड स्टेप लिया जा रहा है। हाँ जी, अगर आपको याद हो सामंथा रूद प्रभु और राज ने लास्ट ईयर दिसंबर में शादी करी थी, बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी। हाँ हाँ राइट। सो रिसेंटली जो अपनी सामंथा रूद प्रभु हैं वो अपने हस्बैंड की किसी फिल्म की सक्सेस पार्टी अटेंड करने के लिए उनके कलीग्स के साथ इंजॉय कर रही थी और जो केक कटिंग के साथ उनकी वाइट टी शर्ट एंड डेनिम में पिक्चर्स निकल कर आई हैं उसमें उनका बेबी बम्प निकल कर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस है जब तक ये लोग खुद क्लियर नहीं करते कि भाई हाँ हाँ हाँ ऐसा है, तब तक तो यही कहा जा रहा है कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंजॉय देयर पेरेंटहुड। डेफिनेटली मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, सिर्फ ग्रोसरी खरीदने जाने के लिए नहीं, आप घर बैठे बैठे ग्रोसरी मंगाइए, फ्रूट्स मंगाइए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मंगाइए, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं, राइट? दैट्स व्हाई ऑर्डर कीजिए ggmartonline.com पर जाकर, जहां आपको प्रीमियम ग्रोसरी के सारे A to Z आइटम मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। मीनवाइल यू कैन ऑल्सो परचेज जामुन ट्राइंगल्स। हाँ जी, चटपटा सा जामुन ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा स्वीट ट्रीट जो आपको क्रिस्पी भी लगेगा और अंदर से सॉफ्ट भी लगेगा और मुंह में रखते ही घुल जाएगा, मतलब मजा आने वाला है यार। वो नॉस्टैल्जिक फ्लेवर होता है ना जामुन का, आए हाय हाय हाय, आप अपने छोटे से बैग में ये छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं। हाँ, हर तरह के नट्स, पम्पकिन सीड्स, पिस्ताज, रोस्टेड अनसॉल्टेड कैलिफोर्निया आमंड्स, प्रीमियम कैश्यूज, मखाना, हर तरह की वो चीज़ जिससे आप हेल्दी सैलेड बनाते हैं, हेल्दी डिशेस बनाते हैं, टॉपिंग्स करते हैं, केक्स के ऊपर कहीं ना कहीं डालते हैं, ये सारे आपको आइटम्स मिल जाएंगे। लॉग ऑन करो ggmartonline.com।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी?
3: Order today from GG Mart, your personal grocer.

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
2: Singapore, prepare for impact.
3: 3, 2, 1.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टक टक जोश में
2: रहो। भाई कंसिस्टेंसी इज द की, ये बात हमें किताबों में तो पता है लेकिन इन रियलिटी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो है अपने मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे एक्टिव चलते हैं ना, मतलब मैं तो जेलस ही फील कर जाती हूँ यार। मतलब हर ट्वीट्स के ऊपर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर हर बात के ऊपर नंबर डालना, सीरीज वाइज आगे चलना, मतलब सीखने वाली चीज़ है, जो है वो है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड डेफिनेटली अगर अमिताभ बच्चन जी की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहूंगी उन्होंने भी हमारी तरह ये फील कर लिया है कि दिन में 24 घंटे कम पड़ रहे हैं यार। मतलब काम करते रह जाओ करते रह जाओ करते रह जाओ, और उसके बाद जब वक्त निकलता है कि जाके कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख ले, फुटबॉल खेल ले या इंजॉय कर ले, कोई शो अटेंड कर ले, तो वक्त नहीं बचता है। और अगर वहां चले गए तो नींद का वक्त नहीं बचेगा। तो रिसेंटली इन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि ये जो 24 घंटे का एक दिन है ना, इसे एक्सटेंड करके 48 आवर्स का कर देना चाहिए ताकि हम एक दिन को ना अच्छे से जी पाए। ये तो इनका मानना है। आपको एक दिन को कंप्लीट करने के लिए कितने घंटों की जरूरत है जरा बताना। 9151893 पे या ऐप पर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।